0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा।

उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद हुरमुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आणि लगेच पुन्हा पुढच्या संवादाकडे जाऊया.
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी. ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा. हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी. बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर.
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in.

0: सब्जियों के 2000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे, इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
4: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
3: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लाम रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केरलम माहे ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
9: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असले तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही

0: समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद फ्रेंच प्रेसिडेंट।

0: Musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई, 8:40 और 40 सेकंड और आपका अपना चैनल FM रेनबो यानी 107.1 MHz पर कार्यक्रम होगा मस्त मुंबई और संडे की ब्राइट मॉर्निंग। जी हाँ, संडे का दिन, छुट्टी का दिन, मौज मस्ती का दिन, लेकिन गीत संगीत के बिना तो संडे अधूरा ही है। और इस शो में आपके साथ मैं आपका जिंदा दिल आरजे। जी हाँ, मेरा नाम आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, पहचान लेते हैं। मेरी आवाज़ सुनते ही लोगों ने व्हाट्सएप पे लिख दिया कि रविन आप आ गए। जी हाँ, मैं आपका जिंदा दिल रविन चौहान। सो लव यू ऑल, हैव ए ब्यूटिफुल संडे। और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने की शुरुआत होने वाली है और गेस करना कि क्या बात करने वाला हूँ इस गाने को सुनकर। मैं जानता हूँ कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स इतने स्मार्ट हैं कि गाना सुनते ही बता देते हैं कि रविन आज आप ये बात करने वाले हैं। एनीवे, आपका दिल लेने के लिए मैं आ रहा हूँ।

हे मुंबई सिटी, 8:52 और 11 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और तीन गाने मैंने आपको बैक टू बैक सुनवाए और गाने सुनकर हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने तरह तरह के जवाब दिए। किसी ने लिखा आशा जी पर आप बात करने वाले हो, हमारे कुछ लिसनर्स ने लिखा जैसे प्रणव शिंदे जी ने लिखा, और इसके अलावा और भी कई लिसनर्स ने लिखा कि आप भरत भूषण जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल सही लिखा प्रणव ने, आज भारत भूषण साहब की बर्थ एनिवर्सरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1952 में एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा किरदार किया था, बहुत ही खूबसूरत किरदार किया था, और उस किरदार की वजह से हिंदुस्तान के घरों में, हर घर में ये चर्चा होने लगी थी कि ये बैजू है, ये हमारा प्यारा बैजू है, हमारा बावरा है, बैजू बावरा, यानी लोग दिल से उन्हें मोहब्बत करने लगे थे, और फिल्म का नाम था बैजू बावरा। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, 14 जून 1920 को मेरठ में उनका जन्म हुआ था। अपने समय में वो बहुत बड़े स्टार रहे, तो आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं, और उन्हीं की कुछ फिल्मों के और मैं एक दो प्यारे से गीत आपको सुनवाऊंगा।

0: जी हाँ दोस्तों, सुबह का आलम क्या होगा। और सुबह तो है आज संडे की ब्राइट मॉर्निंग, और मैं रविन आपके साथ आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर कार्यक्रम मस्त मुंबई। सो लव यू ऑल। और आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि रविन बहुत ही प्यारे प्यारे गाने हमें संडे की इस खूबसूरत सुबह में सुनने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आज हिंदी सिनेमा के एक बहुत ही कमाल के अभिनेता भारत भूषण साहब की बर्थ एनिवर्सरी थी, और ये गाना मैंने प्ले किया फिल्म मुगले आजम से। और मुगले आजम की बात करेंगे तो के आसिफ साहब का नाम तो अपने आप आ ही जाता है। रैंडमली जब भी पूछा जाता है कि हिंदी सिनेमा की कौन सी एक ऐसी महान फिल्म है, बड़ी फिल्म है, तो अक्सर सुनने में आता है कि लोग मुगले आजम, शोले, इन फिल्मों का नाम ले देते हैं। यानी मुगले आजम का नाम ज़रूर लिया जाता है। और मुगले आजम दोस्तों अपने आप में एक मास्टरपीस रही है। कॉस्ट्यूम, डायरेक्शन, स्टोरी, एक्टिंग, यानी जो कुछ भी था सब कुछ बहुत ही कमाल का था। और के आसिफ साहब ने इसे प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट किया था और लिखा था। वैसे के आसिफ साहब का पूरा नाम था आसिफ करीम, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने करियर में सिर्फ 3-4 फिल्में ही बनाई। जी हाँ, पहली फिल्म थी फूल, वो भी सुपरहिट हुई। दूसरी थी हलचल, ये फिल्म भी खूब चली थी। और तीसरी फिल्म थी मुगले आजम, और मुगले आजम बनने में काफ़ी समय लगा था, और ये फिल्म कितनी चली थी हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। और इसके बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई थी सस्ता खून महंगा पानी, जो कभी पूरी ही नहीं हुई। और उनकी आखिरी फिल्म थी लव एंड गॉड, और इस फिल्म को भी वो पूरा नहीं कर पाए और इस दुनिया से चले गए। और 1971 में उनका इंतकाल हो गया था, और 1986 में फिल्म बहुत ही मुश्किलों के साथ रिलीज़ हुई। आज उनकी भी बर्थ एनिवर्सरी है। जी हाँ, के आसिफ साहब की आज बर्थ एनिवर्सरी है, तो हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। आज ही के दिन साल था 1922, इटावा में उनका जन्म हुआ था। तो सुनते रहिए FM रेनबो। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा संगीत।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जी हाँ दोस्तों, तितली उड़ी संडे की ब्राइट मॉर्निंग और तितली उड़कर आपके पास आना चाहती है, और इसकी खास वजह है 1966 में एक फिल्म आई थी सूरज, और इस फिल्म के गीतकार थे शैलेंद्र साहब, और उन्होंने गाना लिखा था तितली उड़ी उड़ जो चली। ये गाना बहुत हिट हुआ था और इस गाने से हिंदी सिनेमा में आई थी एक नई सिंगर, एक नई कलाकार, शारदा अयंगर। जी हाँ, फिल्म के संगीतकार थे शंकर जयकिशन, और ये गाना इतना हिट हुआ कि इस गाने की तितली हिंदुस्तान के लोगों के दिलों तक पहुंच गई, यानी इस गाने की सिंगर हिंदुस्तान के लोगों के दिलों की स्टार बन गई। और हिंदी फिल्मों में शारदा का ये पहला गाना था। उनके करियर में संगीतकार शंकर जयकिशन का वैसे हमेशा बहुत योगदान रहा। आज उनकी पुण्यतिथि है। जी हाँ, पुण्यतिथि 14 जून 2023 को उनका निधन हो गया था, तो इस महान कलाकार को, इस महान गायिका को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और उन्हीं की फिल्म का एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं, रफ़ी साहब और शारदा की आवाज़, और बहुत ही खूबसूरत गीत है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। महसूस कीजिएगा और सुनिएगा।

जी हाँ दोस्तों, 9:28 और 16 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई, और आज हिंदी सिनेमा के एक और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एनिवर्सरी है, तो हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्हें याद करते हैं। वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, हम उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। और हिंदी सिनेमा के एक और बहुत ही कमाल के सिंगर जुबिन नौटियाल जी की बर्थ एनिवर्सरी है, और उनके गाने कितने खूबसूरत हैं और आप हमारे इस चैनल पर अक्सर सुनते रहते हैं, तो जुबिन जी को भी हम उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। सुनते रहिए एफएम रेनबो। अभी आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, एक विशेष कार्यक्रम होगा वतन का राग।

0: इसका सही जवाब है 5 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश से प्रवीण कुमार झा और दमोह से किशन घीवाला। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय स्वाधीनता इतिहास में ऐसे अनगिनत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जिया, जिन्होंने सेवा को साधना माना तथा राष्ट्र प्रेम को जीवन का सर्वोच्च धर्म। उन्होंने स्वतंत्रता को केवल स्वप्न नहीं माना, बल्कि गांवों जंगलों में घूम घूम कर उसे जन जन का विश्वास, संघर्ष और संकल्प बना दिया। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र को समर्पित करने वाले ऐसे ही महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे लक्ष्मण प्रसाद दुबे। वो एक दूरदर्शी शिक्षाविद और समाज सुधारक भी थे। क्योंकि उनका पूरा जीवन एक शिक्षक के रूप में बीता और अपने इस कर्तव्य को उन्होंने एक साधना माना, इसलिए वो आम जन में गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मण प्रसाद दुबे का जन्म 9 जून 1909 को दुर्ग जिले में हुआ था। ये वो समय था जब देश में राष्ट्रवाद की लहरें हिलोरें ले रही थीं। सन 1905 में बंग भंग आंदोलन की आंच से पूरा देश सुलग रहा था। ऐसे वातावरण में लक्ष्मण प्रसाद दुबे का बचपन बीत रहा था। उनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर ही आरंभ हुई और शिक्षा के साथ साथ वो समाज की विषमताओं को भी देख रहे थे। शोषण और पराधीनता के प्रभाव से वो अत्यंत आहत हो जाया करते थे। विद्यार्थी जीवन से ही उनके भीतर अध्ययन के साथ साथ सामाजिक सरोकारों के प्रति गहरी रुचि थी। यही कारण है कि वो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि समाज और राष्ट्र की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते रहे। फिर वो समय आया कि जब देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन नई दिशा प्राप्त कर रहा था। स्वदेशी और सत्याग्रह के विचार लोगों को आकर्षित कर रहे थे। लक्ष्मण प्रसाद दुबे भी इस राष्ट्रीय चेतना से अछूते नहीं रहे। उनके मन में देश की स्वतंत्रता और समाज के उत्थान का भाव निरंतर प्रबल होता गया।

अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। वो अध्यापन का कार्य तो करते ही थे, इसके साथ ही उन्होंने अनेक युवाओं को राष्ट्र सेवा हेतु प्रेरित किया। भिलाई में शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए उनका संपर्क जिले के वरिष्ठ सत्याग्रही नरसिंह प्रसाद अग्रवाल से हुआ। अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में उन्होंने मद्य निषेध आंदोलन चलाया, स्वदेशी का संकल्प लिया तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं के साथ साथ उन्होंने जॉर्ज पंचम का चित्र भी जलाया। 1930 का दशक भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण समय था, जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। इसी समय लक्ष्मण प्रसाद दुबे सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। वो अब राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। वो जनसंपर्क, संगठन निर्माण के साथ ही लोगों के भीतर राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम करने लगे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत शांत, सरल और कर्मठ था। वो मानते थे कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि समाज में जागृति और आत्मसम्मान का संचार भी है। यही कारण है कि वो शिक्षा पर अत्यधिक बल देते थे। वो विशेष रूप से नारी शिक्षा और नारी स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे। सन 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की, तब इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से हुआ। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की, तब इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से हुआ। क्योंकि यहाँ कोई समुद्र तट नहीं था, इसलिए सविनय अवज्ञा की भावना से जुड़ते हुए ब्रिटिश शासन के अन्य दमनकारी कानूनों को चुनौती दी गई। मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह आंदोलन का प्रमुख रूप बन गया। वन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, जनजातीय समाज के लोगों और ग्रामीणों पर अंग्रेजों ने जंगलों में चराई, लकड़ी, घास और वन उपज लेने पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। इसलिए सत्याग्रहियों ने इन कानूनों का उल्लंघन करने का निर्णय

लिया। छत्तीसगढ़ का पोड़ी जंगल सत्याग्रह 1930 के जंगल सत्याग्रहों में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। छत्तीसगढ़ में यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वन कानूनों के विरोध में किया गया था। धमतरी के पास स्थित बालोद के ग्राम पोड़ी में हुए जंगल सत्याग्रह का आरंभ जुलाई 1930 में हुआ, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने किया। लक्ष्मण प्रसाद दुबे चूंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहे थे, इसलिए जाहिर तौर पर वो इसमें सघन रूप से सक्रिय हुए। सत्याग्रहियों ने आरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश किया, घास और लकड़ी एकत्र की, पशुओं को प्रतिबंधित क्षेत्रों में चराया, इस तरह वन कानूनों का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। पोड़ी सत्याग्रह की पूरी रूपरेखा तथा दस्तावेजी काम अग्रवाल जी ने लक्ष्मण प्रसाद दुबे को सौंप दिया था। सत्याग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को उन्होंने गुप्त रूप से संरक्षित रखा और उसका पूरा लेखा जोखा एक रजिस्टर में दर्ज कर उसे संकलित किया। सत्याग्रह की इन सभाओं में महिलाएं भी आती थीं, जो चरखा लेकर आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती थीं।

लक्ष्मण प्रसाद दुबे ने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो लोगों के बीच जाकर उन्हें देश की स्थिति से अवगत कराते, स्वाधीनता आंदोलन के उद्देश्य को समझाते और राष्ट्रहित में लोगों को संगठित होने का संदेश देते। उनका मानना था कि स्वतंत्रता का संघर्ष केवल नेताओं का नहीं बल्कि जन सामान्य का संघर्ष है। सन 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, तब पूरा देश नई ऊर्जा से भर उठा और एक निर्णायक लड़ाई आरंभ हुई। इस समय भी लक्ष्मण प्रसाद दुबे छत्तीसगढ़ में सक्रिय थे। वो स्वाधीनता आंदोलन और जंगल सत्याग्रह में पूरी तरह से जुटे हुए थे। उनकी गतिविधियों पर अंग्रेजी शासन की नजर रहने लगी, लेकिन नरसिंह प्रसाद अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद भी वो रुके नहीं, वो आंदोलन को हवा देते रहे। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण प्रसाद दुबे को गिरफ्तार करने का आदेश जारी हुआ। उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया और भूमिगत हो गए और वन्य क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन की लौ जलाते रहे। सन 1942 से 1947 तक वो दुर्ग, रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय रहे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद भी वो चुप नहीं बैठे। वो लगातार समाज सेवा के मार्ग पर चलते रहे। उनके लिए स्वाधीनता का अर्थ केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं था, वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां शिक्षा, जागरूकता और मानवीय मूल्यों का विकास हो। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही उन्होंने शिक्षा के महत्व को बहुत गहराई से समझ लिया था। वो अक्सर कहा करते थे कि किसी भी राष्ट्र का वास्तविक विकास शिक्षित और जागरूक नागरिकों के माध्यम से ही संभव है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने किसी भी पद का लालच नहीं किया। आजादी के बाद उनका पूरा ध्यान सामाजिक जागरण और शिक्षा पर ही केंद्रित रहा। लक्ष्मण प्रसाद दुबे ने ग्रामीण अंचलों में शिक्षा के प्रसार और विद्यालयों की स्थापना की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो मात्र एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी नहीं थे, बल्कि वो ग्रामीण शिक्षा जागरण के अग्रदूत भी थे। गुरुजी के रूप में उन्होंने गांव-गांव में

कक्षा की अलख जगाई, अनेक युवाओं को अध्यापन कार्य से जोड़ा और ग्रामीण अंचलों में विद्यालयीन शिक्षा के विस्तार की दिशा में मजबूत नींव रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की आजादी, भारत का उत्थान, भारत की विजय ही उनके जीवन का अनंतिम लक्ष्य था। निस्वार्थ भाव से आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 23 जुलाई सन 1993 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान राष्ट्र सेवी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई. 10:08 हो चुके हैं. आप सुन रहे हैं FM रेनबो. अभी आप सुनेंगे मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं. G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. भारतीय शिक्षण संस्थानों को वैश्विक निवेशकों और बाजार से जोड़ने वाले शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम भारत इनोवेट्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन भी करेंगे तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया जाएगा. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने विश्व रक्तदाता दिवस पर देशवासियों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्त की एक एक बूंद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन दे सकती है और किसी परिवार में फिर से खुशियां ला सकती है. श्री जाधव ने लोगों से आगे आकर जिम्मेदारी के साथ रक्तदान करने और मानव जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म

करने के लिए रविवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके तुरंत बाद रणनीतिक रूप से अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को सभी के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रंप का ये बयान पाकिस्तान के उस संकेत के कुछ घंटों बाद आया है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका और ईरान बातचीत के आखिरी चरण में हैं और समझौते के लिए रविवार को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया जाएगा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत ने अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करने वाला है। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। आज के अन्य मैच में नीदरलैंड्स का मुकाबला बांग्लादेश के साथ होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे खेला जाएगा। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस, सुनते रहिए FM रेनबो। तो गीत संगीत के दीवानों, FM के चाहने वालों, वेलकम बैक। 10:03 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं FM रेनबो यानी 107.1 MHz पर कार्यक्रम नमस्ते भारत और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। तो चलिए आंखों में आंखें डालकर कुछ बात कर लेते हैं।

जी हाँ दोस्तों, 15 आज माफ़ कीजिए, आज 14 जून है और कल 15 जून होगी। आज संडे का दिन है और अक्सर 14 जून तक मानसून आ जाता है, बरसात आ जाती है और हम लोगों को गर्मी से, स्पेशली मुंबई में गर्मी से हमें राहत मिल जाती है। लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है कि बरसात आने का नाम ही नहीं ले रही है और हम सभी बहुत ही बेकरारी के साथ, शिद्दत के साथ बरसात का इंतज़ार कर रहे हैं। इसीलिए मैंने गाना प्ले किया कि रिमझिम के तराने, कि शायद ये गाने को सुनकर, इस गाने को सुनकर मुंबई में मानसून अपना रंग दिखा दे और हमें गर्मी से छुट्टी मिल जाए। एनीवे, आज हम सभी जानते हैं, हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने व्हाट्सएप के ज़रिए बताया है कि आज कौन सा खास दिन है। आप उस दिन के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है। आज है दोस्तों वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जैसे हिंदी में कह सकते हैं कि विश्व रक्तदाता दिवस। तो क्या कभी आपने रक्तदान किया है, और किया है तो कब किया है, कहाँ किया है और किसके लिए किया है, और ब्लड डोनेशन कितना ज़रूरी है ये करना, तो इसके बारे में आपके जो भी विचार हैं आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए, गौर से सुनिएगा। जी हाँ, मेरे दिल से आपके लिए।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

जी हाँ दोस्तों, 10:21 और 11 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान। 1977 में एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथोनी। इस फिल्म में तीन बिछड़े हुए भाई एक साथ, जी हाँ एक साथ, अपनी अंधी माँ, और अंधी माँ का रोल किया था निरूपा रॉय जी ने, अपनी अंधी माँ को ब्लड देते हैं यानी खून देते हैं, और उन तीनों को ये पता भी नहीं होता कि ये उनकी अपनी खुद की सगी माँ है। इस सीन की काफ़ी तारीफ हुई थी। वैसे फिल्मों में यानी हिंदी फिल्मों में हम ऐसे सीन अक्सर देखते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे निजी ज़िंदगी में भी ऐसे मौके आ जाते हैं कि जब अस्पताल में किसी एडमिट बीमार इंसान को खून की ज़रूरत होती है, तो क्या आपने कभी ब्लड डोनेट किया है या ब्लड डोनेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि अमर अकबर एंथोनी के इस सीन की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी। मनमोहन देसाई साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया था कि इस फिल्म में अमर अकबर एंथोनी, यानी अमर एक हिंदू है और अकबर एक मुसलमान है और एंथोनी एक क्रिश्चियन है, वो तीनों सगे भाई हैं लेकिन बिछड़ चुके हैं, और किस तरह

से अलग अलग तीन धर्मों के लोग एक अपनी माँ को ब्लड देते हैं, तो उन्होंने इसके ज़रिए एक प्रेम का, आपसी प्रेम का और मानवता का संदेश दिया था। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM रेनबो। आज है 14 जून और आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी और ये दिन नोबल पुरस्कार विजेता कॉल लैंड स्टीनर की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि कॉल लैंड स्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी, इसका आविष्कार किया था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खून को किसी फैक्ट्री या कारखाने में नहीं बनाया जा सकता, ये बहुत खास बात है। यानी खून को किसी कारखाने, फैक्ट्री या वर्कशॉप में नहीं बनाया जा सकता, ये केवल इंसान के शरीर के अंदर ही अपने आप बन

बनता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये कुदरत की देन है, कुदरत का सिस्टम है कि इंसान के शरीर के अंदर ही ब्लड बनता है। दुर्घटना की वजह से या ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं, हालात हैं जब पेशेंट की जान बचाने के लिए खून चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, ठीक इसी तरह बहुत सारे केसेस में पेशेंट ऐसी हालत में आ जाते हैं कि उनके लिए ब्लड जल की तरह ज़रूरी हो जाता है। यानी अगर उन्हें ब्लड नहीं मिलेगा तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इसी से पता चलता है कि ब्लड डोनेट करना कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगला गीत और इसके बारे में यानी ब्लड डोनेशन के बारे में आप कुछ भी कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप सबको मेरे दिल का प्यार पुकारे। बहुत ही खूबसूरत गीत। और 10:41 और 11 सेकंड हो चुके हैं और बात कर रहे थे विश्व रक्तदाता दिवस की। दोस्तों, 2026 का जो थीम है, यानी इस साल का जो थीम है, वो है मानवता की एक बूंद रक्तदान करें और जीवन बचाएं, जिंदगी बचाएं। इंग्लिश में इस अभियान को नाम दिया गया है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड सेव लाइव्स। अगर किसी बीमार इंसान को ब्लड चाहिए तो उसे ब्लड ही देना पड़ेगा। इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता, इसका कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। इससे पता चलता है कि खून का कितना महत्व है। वो कहते हैं ना, हमारी हिंदी फिल्मों में तो अक्सर दिखाया जाता है कि खून के रिश्ते, खून का नाता। जी हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि ब्लड कितना ज़रूरी है, कितना खास है। और जब भी कोई इंसान ब्लड डोनेट करता है तो वो किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी को बचाने का काम करता है। जी हाँ, गौर से सुनिए। जब भी हम खून देते हैं, रक्त का दान करते हैं, तो किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी को बचाने का काम करते हैं। आपका डोनेट किया हुआ खून किसी न किसी पेशेंट

के ज़रूर काम आएगा। ये एक बहुत ही अच्छा कर्म है जिसे हम सभी कर सकते हैं, तो फिर देर किस बात की। इंसानियत के नाम, भाईचारे के नाम, आपसी प्रेम के नाम, मोहब्बत के नाम, दुनिया के नाम, जी हाँ, एक रिश्ता जो आपका और हमारा, हम सबका एक दूसरे से है, उसके लिए हमें रक्तदान, ब्लड डोनेशन ज़रूर करना चाहिए। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे थे ब्लड डोनेशन के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में दान का कितना महत्व है और रक्त के दान को तो महादान कहा गया है। अगर हम किसी इंसान को थोड़ा सा खाना देते हैं तो खाना खाने के थोड़ी देर बाद यानी उसे फिर से भूख लग जाएगी। कपड़े देते हैं तो वो कपड़े कुछ समय तक उसके काम आएंगे और फिर उसे दोबारा कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम किसी को थोड़ा सा पैसा देते हैं तो थोड़े समय के बाद पैसे खत्म हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे और फिर उसे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम किसी को ब्लड देते हैं यानी खून देकर किसी बीमार इंसान की ज़िंदगी बचा लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी और मौत की जंग में

हमने उसकी मौत को, उसकी आने वाली मौत को हरा दिया और उसके नाम जिंदगी कर दी। तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही नेक काम है। तो हम सभी को आज के दिन ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए। अगला गीत लता जी की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत और बात कर रहे थे आज हम विश्व रक्तदाता दिवस की। अकोला से विजेंद्र घाटो लिखते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ब्लड डोनेशन किया है और भालचंद्र फाटक जी लिखते हैं कि पूरी दुनिया में लहू का रंग एक ही है, यानी लाल है, और किसी को भी दे सकते हैं। और मुझे इस बात पर नाना पाटेकर का वो क्रांतिवीर का डायलॉग याद आ गया कि हिंदू का खून, मुसलमान का खून, सबका रंग एक जैसा ही होता है। और डॉक्टर अंजू अंधेरी से लिखते हैं कि ब्लड डोनेशन ज़रूर करना चाहिए और 3 महीने के बाद ये खून दोबारा बन जाता है। प्रणव शिंदे ने भी बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है कि रक्तदान करना बहुत अच्छी बात है और ज़रूर करना चाहिए। और इसके अलावा हमारे एक और लिसनर हैं पंकज माहौड़, उन्होंने भी रक्तदान की के बारे में बहुत ही अच्छे शब्द कहे हैं कि जो लोग एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और उन्हें अचानक खून की ज़रूरत होती है तो ऐसे में ब्लड डोनेट करना बहुत ज़रूरी है। और भागेश रघुनाथ पाटिल वाड़वन से लिखते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अब तक 3 बार ब्लड डोनेट किया है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ब्लड डोनेशन का जो उन्हें सर्टिफिकेट मिला, एप्रिसिएशन का जो सर्टिफिकेट मिला, उसका फ़ोटो भी, बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो उन्होंने व्हाट्सएप पर हमारे साथ शेयर किया है। एनीवे, आप सभी लिसनर्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इसी तरह इस नोबल कॉज को करते रहें। ब्लड डोनेट करना बहुत ज़रूरी है और आज के दिन तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप ब्लड डोनेट करके, जी हाँ दोस्तों, आप ब्लड डोनेट करके किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं और किसी भी इंसान की ज़िंदगी के रॉकस्टार बन सकते हैं। एनीवे, आखिरी गीत आपकी नज़र करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। हमारे साथी तन्मय स्टूडियो में आ चुके हैं। आखिरी गीत सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप ही हमारा प्यार हैं, आप ही हमारी ज़िंदगी हैं। सुनते रहिए FM रेनबो।

0: आइए अब सुनते हैं इस वक्त के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेटिव लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेश CIO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों में सहयोग देने की वार्ता भी करेंगे। नीस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी और इतलावी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ साथ मिलकर उत्क्रम कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसमें प्रमुख इसरो के वी नारायण ने बेंगलोर से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमा सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक कार्यरत रहता है। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार करने पर काम कर रहा है जो कि चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहे। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। ईरान के समाचार एजेंसी के अनुसार खामनेई ने अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कोम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थान में दफनाया जाएगा। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के में पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर में और 5 गेंदों में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने 66 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाए। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
1: बारिश की बूंद में बातों में यादों में।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, आप जानते ही हैं ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है और इस बार प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम में आम का जिक्र किया है जो कि बेहद खास हो गया है मन की बात में उल्लेख होते ही। आम, फलों का राजा, जो गर्मी के मौसम में हमारी रसोई में, हमारे फ्रिज में और हमारी प्लेट में अपना स्थान सुरक्षित रखता है, भारत में उसकी क्या स्थिति है, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे निर्यात में उसका क्या स्थान है और बदलते मौसम के साथ आम की पैदावार कैसे बदल रही है, ये सब बातें आज हम करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन पहले जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किन शब्दों में फलों के राजा आम का उल्लेख किया है मन की बात में।
3: साथियों, भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत

0: विशेष है, ऐसे ही छाए रहिए।
1: तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्द प्रेरणा देते हैं आम उगाने वाले किसानों को भी, साथ ही भारत में जो कृषि अनुसंधान है उसे भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम लगातार इस पैदावार को बेहतर करें और निर्यात में भी अपना स्थान सुरक्षित रखें। मैं अपने विशेषज्ञों का परिचय करवा रही हूं। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान से डॉक्टर संजय कुमार सिंह। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत नमस्कार सभी।
1: हमारे साथ हैं डॉक्टर जयप्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक, फल विज्ञान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर जयप्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: और हमारे साथ हैं श्री अवनीश कुमार त्यागी, आप बागवान हैं, नर्सरी आप चलाते हैं, आम के किसान हैं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आप इस कार्यक्रम में आए हैं। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
4: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो आम के बहुत सारे नाम लिए हैं और हमारे जो श्रोता इस रसीले फल को बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारा टेस्ट उन्हें इस समय आ गया होगा ये नाम सुनते ही। लेकिन मैं सबसे पहला सवाल डॉक्टर संजय आपसे करना चाहूंगी, भारत में आम की कुल कितनी तरह की वैरायटी है?
2: देखिए, भारत जो है विश्व में आम के एक प्रमुख उत्पादक देश है
1: जी।
2: यहाँ सबसे ज्यादा इसकी जैव विविधता पाई जाती है, करीब 1200 किस्में जो है विभिन्न प्रांतों में उगाई जा रही है, और इनमें से करीब 3 दर्जन ऐसे किस्में हैं जो व्यावसायिक रूप से उनकी खेती की जाती है, और ये केरल से लेकर जम्मू तक कम से कम 20 राज्यों में इसकी कमर्शियल खेती हो रही है। और ये एक तरह से कहें हमारा फल का जो बास्केट है उसमें हमारी देश की पहचान, आम उत्पादक हम लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, और करीब 24 से 28 मीट्रिक टन इसका उत्पादन सालाना होता है डिपेंडिंग ऑन ऑफ एंड ऑन ईयर, और इसमें से करीबन हम 5% जो विश्व के जो एक्सपोर्ट करते हैं करीबन 57 मिलियन US डॉलर का, ये हमारे यहाँ से जाता है, ये ताजा फलों के रूप में जाता है, और इसमें जो इसके पल्प है और भी अन्य उत्पाद है वो इत्यादि एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे देश में एक मुख्य फल तो है ही। हमारे हर एक राज्य में, चाहे वो जगतिन क्षेत्र में हो, चाहे पूर्वी क्षेत्र में हो, चाहे वेस्टर्न में हो या नॉर्थ की हो, किस्मों का बहुत बड़ा विविधीकरण पाया जाता है, जो उस क्षेत्र के हिसाब से वो प्रचलित भी है, उसमें स्वाद भी बहुत अच्छी चीज है, और उसके हिसाब से जो कुछ अगेती हैं, कुछ पिछेती हैं, और स्वाद के हिसाब से वो जानी जाती हैं और बाजार में आती हैं, तब हमारे जो उपभोक्ता हैं उसका लुफ्त उठा पाते हैं। और यहाँ हमारे देश जो है, मतलब मैं कहूँ कि भारत में हम ढंग से खेती करें और अपनी किस्मों को इस तरह से उगाएं, तो भारत में 6 महीने से 7 महीने तक हम ताजा फलों को ला सकते हैं और उसका लुफ्त उठा सकते हैं।
1: जी, मैं डॉक्टर जयप्रकाश अब आपसे जानना चाहूंगी, आजकल बाजार में कम जगह में ज्यादा फल देने वाले जो संकर किस्में हैं, हाइब्रिड किस्में, वो आ रही हैं, तो किसानों के लिए इस समय सबसे बेहतरीन किस्म कौन सी है आम की?
3: अब जैसे आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का जिक्र किया
1: जी।
3: और कार्यक्रम में उन्होंने जिन किस्मों का जिक्र किया, देखें तो पूरे भारत में अलग अलग तरह की किस्में लोकप्रिय हैं। वैज्ञानिकों ने पिछले 50-60 वर्षों में इन किस्मों को आपस में मिलाया है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लूं, नीलम का जिक्र किया, दक्षिण भारत तमिलनाडु में होती
1: जी।
3: है, और दशहरी जो उत्तर भारत में एक बड़ी किस्म है, बड़े क्षेत्रों में होती है। दोनों किस्मों को मिला के आम्रपाली और मल्लिका जैसी किस्में आई
1: जी।
3: और आज की तारीख में करीब 2 लाख हेक्टेयर में दोनों किस्में फैली है, और आज जब 30-40 साल हो गया इन संकर किस्मों को, आम्रपाली मल्लिका को, तब ये आपको देश में उपलब्ध है और मंडियों में मिल रहा है, और इसके फल बड़े गुणवत्ता वाले हैं। यहाँ खास बात बताने वाली है कि जो कंज्यूमर है, जो हमारा उपभोक्ता है, वो चाहता है कि उसका जो पुराना टेस्ट है किस्मों का, चाहे वो लंगड़ा में हो, दशहरी में हो, या बॉम्बे ग्रीन में हो, नीलम में, वो बना रहे
1: जी।
3: तो वैज्ञानिकों की भी सोच यही रही है कि इन किस्मों को मिलाकर तो दोनों के अच्छे गुण आ जाएं, और दो अच्छे गुण मिलके और अच्छा गुण हो जाए, कि मिठास भी बहुत अच्छी हो, आकार बड़ा हो जाए, और इनकी सेल्फ लाइफ अच्छी हो जाए। इन सारी चीजों को मिला के मल्लिका जैसी किस्म आई है। और अगले स्तर पर जो रंगीन किस्में आई हैं, जैसे पूसा अरुणिमा है, पूसा लालिमा है, अंबिका है, अरुणिका है, अर्का उदया है, अर्का सुप्रभात है, ये सब संकर किस्में हैं, और आज ये सभी किस्में धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही हैं। और इन किस्मों की खास विशेषता है कि ये रंगीन तो हैं ही, इनके अंदर जो सेल्फ लाइफ है, जैसे फल को आप तोड़ के रखते हैं तो सामान्य तौर पे हम मानते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर फल की लाइफ खत्म हो जाएगी, मतलब किसान के यहाँ तोड़ने से लेके उपभोक्ता के प्रयोग करने तक। लेकिन अगर आप हमको निर्यात में जाना है, निर्यात के लिए जाना है, तो ऐसी किस्में चाहिए, और ये संकर किस्में उस दृष्टिकोण से उत्तम है, और ये संकर किस्में आपको इसको 10 से 12 दिन 15 दिन 18 दिन तक सामान्य तापक्रम पर बिना किसी रसायन के या बिना किसी अलग परिस्थिति के आराम से 12 से 15 दिन तक रुक रही है।
1: तो संकर किस्मों में ये सारे गुण हैं। जी तो अवनीश जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, आप कितने सालों से आम की खेती कर रहे हैं?
4: लगभग 1990 से हम जो है आम की खेती कर रहे हैं।
1: जी,
4: जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान जी नरेंद्र मोदी जी ने अभी मन की बात में जिक्र किया कि जैसे हम लंगड़ा, चौसा, दशहरी, रामकेला और बम्बई ये सब उगाते हैं। हम परंपरागत खेती करते हैं, इससे हमें बड़ा अच्छा लाभ होता है। इसमें जो खेत की जो मिट्टी है इसका स्वास्थ्य भी बना रहता है, इसलिए हम जो प्राचीन काल से हमारे पूर्वज भी इस काम को करते चले आ रहे हैं।
1: जी संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, हम तरह तरह के नाम सुन रहे हैं आमों के, ये बताइए कि कैसे आम का नामकरण किया जाता है? किस्म के आधार पर या स्थान के आधार पर या भौगोलिक परिस्थिति या कोई और इसका पैमाना है?
2: जैसा कि मैंने बताया, करीब 1200 किस्में भारतवर्ष में पाई जाती हैं, और इसमें जो विभिन्नता है उस समय के, जो आपने सुना होगा जो दरभंगा में जो लखी बाग एन अकबरी में उसका जिक्र है, जहाँ पे 7,00,000 बनाए मैंने आम के पौध लगाए गए थे जो अकबर ने लगवाया था, कि चूंकि उतना प्रचलित वो फल था उनके लिए, तो इसलिए लोकप्रिय होने के कारण वहाँ पे जो हमारी किस्में हैं ये सारी सिडलिंग ओरिजिन के हैं। और जिस तरह के जो इसमें बनता गया, इसमें प्लस्ट्री कहते हैं, चांस सिडलिंग कहते हैं, जिसमें उस समय के उसको शेप, साइज, कलर और उसके सुगंध, और जैसे इन्होंने कहा रामकेला, ये एकदम अचार बनाने वाली किस्म है। दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, हिमसागर है, ये सारी जो है टेबल पर्पस, जो खाने के लिए ताजे बन। इसी तरह कुछ पल्पिंग की है जो प्रोसेसिंग में जाती है, तोतापुरी है, बादामी है, हापुस जो अल्फांजो के नाम से जाना जाता है, तो ये प्रोसेसिंग के लिए भी है, ताजे खाने के लिए भी है। और इसमें से जैसा डॉक्टर जयप्रकाश ने बताया कि एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास कुछ अच्छी किस्में जिनकी भंडारण क्षमता कम मिठास, खट्टा मीठा वाले आम होती हैं और भंडारण की क्षमता अच्छी होती है, ये विदेशी बाजार में लंबे समय तक ठहर सकती हैं, जहां 8 दिन 10 दिन 14 दिन की भंडारण क्षमता होती है उसके पकने के बाद, तो इस तरह से दुरुस्त बाजारों को हम भेज सकते हैं। और ऐसी ही किस्मों की अब मांग हो रही है। आप मध्य एशिया की बात करें, बिम्स्टेक कंट्री की बात करें, तो यहाँ ये जाती है जहां हमारा ही एशियन पॉपुलेशन खाता है इसको, लेकिन जब हम विदेशों में भेजते हैं, जापान हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन कंट्री है, यूएसए हो, तो यहाँ उनके हिसाब से किस्मों को हम बढ़ाते हैं, उनका क्षेत्रफल बढ़ता है, और उसको जो है एक एजेंसी जो भारत से इनको निर्यात में सहयोग देती है, अपेडा का है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसका जो एक्सपोर्ट को देखती है, अपेडा कहते हैं, और ये जो है फार्मर्स को रजिस्टर करती है, उनके क्लस्टर से उनके जो फल जो होते हैं अच्छे गुणवत्ता वाले होते हैं उनको ये बताया जाता है कि आपका फार्म रजिस्टर्ड है, आपको किस तरह की खाद, पानी, कीटनाशक इत्यादि का उपयोग करना है जिससे उसमें अंश बहुत कम मिले, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है, फिर वो ग्रेड करते हैं, फिर पूरी वैल्यू चेन के लोग लग जाते हैं, जो तुड़ाई के बाद किस तरह से डिसैपिंग होती है, एक पूरी प्रोटोकॉल होती है, फिर उसके बाद उसमें एक ट्रीटमेंट की जाती है, उनको कहते हैं वेपर हीट ट्रीटमेंट या हॉट वाटर ट्रीटमेंट या इरेडिएशन, विभिन्न बाजारों के लिए, जैसे जापान भेजना है तो इरेडिएशन कराना पड़ेगा, जहां अमेरिका भेजना है तो वेपर हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है जो उन क्लस्टर में बनाई जाती है। और यहां जब फलों को हम ट्रीट कर देते हैं उसमें ये देखा जाता है कि आपके देश से जब भी उत्पाद बाहर जा रहा है तो उसमें कोई कीट या रोग ना जाए, और इसलिए ये ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। जैसे फल मक्खी है और एक स्टोन वीविल होती है, ये उसमें प्राय देखा गया कि अगर बाग को आप पुराना है उसमें कोई केयर नहीं करते हैं तो उसमें ये दिख जाती है, तो उसको ये ट्रीट करने के बाद इसको फिर हम इसको ग्रेडिंग करते हैं, पैकेजिंग होती है, और इसकी पूरी कोल्ड चेन है, दोनों माध्यम से जाती है हमारे यहाँ से, वायु मार्ग से भी जाती है और समुद्री मार्ग से भी, और ये सारी प्रोटोकॉल अब बना ली गई है जिसको हम करीब 30 दिन से ऊपर तक ले जाके दुरुस्त बाजारों को हम भेज सकते हैं।
1: जी मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि किसानों को आप कैसे एजुकेट करते हैं ताकि शुरुआत में ही जो फल है उसकी गुणवत्ता बनी रहे।
2: इसमें जैसा कि मैं बता रहा था कि जैसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने हमारे शोध संस्थान है, पूसा संस्थान है, लखनऊ में हमारा इंस्टीट्यूट है, बैंगलोर में है, जो आमों पे कार्य करता है, क्षेत्र के हिसाब से इन्होंने एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बनाई हुई है जिससे कि उस जगह की उसमें मृदा के हिसाब से जो उसमें गुणवत्ता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके आधार पे कितनी खाद देनी है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन होना है, कौन से फल लगने से लेकर मैच्योर होने तक तक की उसमें जो दी जाती है वो सारी उसमें बताई जाती है। उस तरह में अगर कोई कीट लगे या रोग लगे तो उसका रोकथाम किस तरह से करें, और इन समय की जो प्रणाली है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये प्रायः जो है अपेडा इन्हीं हमसे लेता है। और उस क्षेत्र चाहे वो गुजरात का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, रत्नागिरी का हो, चाहे कृष्णगिरी है तमिलनाडु में, वहां पे है आंध्र प्रदेश के लोग हैं, सारे जगह जो है

0: हम उस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं जिससे कि कोई भी कीटनाशक या केमिकल का अंश ना आए और गुणवत्ता वाले फल तैयार हो। और उनको ये प्रशिक्षण हम लोग करते हैं, वो हमें भी बताते हैं, उनके द्वारा जो स्पॉन्सर्ड होता है
1: जी।
0: और किसान के समूह को हम लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन क्षेत्रों में एक तरह के किसान हैं जिससे कि हमें क्वांटिटी मिल सके जिसको हम एक्सपोर्ट कर सके। छिटपुट छिटपुट हम करके बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट नहीं, जैसे कि आप जान रहे कि देश में कई मैंगो क्लस्टर हैं, मलियाबाद है, बनारस है, भागलपुर है, तो यहाँ इसी तरह मालदा आपने सुना होगा जो हमारे नॉर्थ और ईस्टर्न सेक्टर में है, तो यहाँ से काफी आम बाहर जाता है। और यहाँ उन किसानों को रजिस्ट्रेशन के बाद सारी उनको ट्रेनिंग होती है, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, उनकी सॉइल की जांच होती है, सारी चीजें जब हो जाती हैं तब अपेटा की एजेंसी जो उनके जो एजेंट होते हैं, जो खरीदार होते हैं, वो आते हैं, उनको आधुनिक मशीन के द्वारा या लगी के द्वारा जिससे किसी चोट कम लगे फलों को तोड़ते हैं। फिर उसकी प्रक्रिया है जिसमें डिसैपिंग है, उसको क्लीनिंग है, उसको डिप करना पड़ता है, उसको ट्रीटमेंट है, उसके बाद जैसा कि मैंने बताया जो VHT वाटर ही ट्रीटमेंट जो है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, यही रिडक्शन वो कराते हैं। फिर हर एक देश के हिसाब से उनके डब्बा का जो कहते हैं कोई 2.5 किलो का होता है, कोई 5 किलो का है, कोई 6.5 किलो का है, उस तरह से उसकी पैकेजिंग होती है, एक स्टैंडर्ड होता है वो। वो करने के बाद वो फिर कोल्ड चेन, अगर हम बहुत जैसे यूरोपीय बाजार को भेजना हो, हम शिप से नहीं भेज पाएंगे, हम कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे कि बहुत ज्यादा समय होगा, सड़ जाएगा, तो वहां जो वायु मार्ग से जुड़ जाता है तो उसको हम कोल्ड चेन के माध्यम से भेजते हैं जिससे कि वहां बाजार में पहुंचे। और 2 दिन के बाद जब 1 दिन के बाद जैसे ही रिटेल में चेन मिल जाए तो वो ऐसी अवस्था में जाए कि जिससे कि ग्राहक इसको खरीद पाए। और किसानों को मैं बताऊं, इस साल जैसा देखा गया कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा, बहुत अर्ली रेन्स आई और क्रॉप डैमेज बहुत हुआ, लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि इसलिए वजह कि हमारी घरेलू मांग भी बहुत ज्यादा है, कीमतें भी बढ़ी हुई हैं, किसानों को जो कीमत भी है इस साल बढ़िया मिल रहा है, लेकिन एक जो एक्सपोर्टर्स थे जो हमारे जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं, दुबई, ओमान, दोहा, ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, इनको जा रही थी, वहां अब इस युद्ध के कारण जो चल रहा है करंट सिचुएशन उसमें नहीं जा पा रहा है, तो हमें नए बाजार देखने होंगे।
1: अब
0: हमें हमारे नेबरिंग कंट्री है या बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, हमें अल्टरनेट मार्केट हमेशा तैयार देखना है जहाँ एक्सपोर्ट में हम डोमिनेट करते हैं। और सिंगापुर, हांगकांग, ये बहुत बड़ा मार्केट हमारे लिए निकल कर आया है और ये मैं कहूँ कि किसानों को अच्छी कीमत दे पाया और उनके जो प्रयास थे उसको सफल बनाया।
1: जी, बातचीत का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, और भी कई प्रश्न है मेरे पास आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अपनी पसंद का कौन सा गाना आप हमारे श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।
0: मैं तो कहूँगा कि हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट हैं वो कुछ अगर गाना बता सकते हैं।
2: आजकल हम बहुत बात कर रहे हैं कि देश को कैसे हम आत्मनिर्भर बनाएं, तो ये गाना आया हुआ था 80s-90s के बीच में, नाम फिल्म का है, पंकज उदास जी की आवाज में है। उस गाने से उस दौर में और बाद के दौर में बहुत से लोग ने प्रेरणा लेके विदेशों से अपने आप को देश में शिफ्ट किया और अच्छे से यहाँ पर अपना व्यवसाय या जो भी कार्य क्षेत्र था उस क्षेत्र में आगे गए। उस गाने के बोल हैं कि चिट्ठी
1: आई है,
2: वचन की चिट्ठी आई है। ये गाना आप सुनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और उम्मीद है कि श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा।
1: बहुत ही प्यारा सा गाना है, हम यही गाना

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की, और आम अब आम नहीं रहा, बहुत खास हो गया है, और साथ ही हम बहुत खास बातें आम से जुड़ी हुई जान रहे हैं। इस कार्यक्रम में अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर संजय कुमार सिंह हैं, उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हमारे साथ हैं। डॉक्टर जय प्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक हैं आप फल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से, और हमारे साथ आम के किसान हैं श्री अवनीश कुमार त्यागी, आप बागवान भी हैं, नर्सरी भी चलाते हैं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से इस कार्यक्रम में आए हैं। आप तीनों का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे आम के नामकरण की, कि इतनी सारी किस्में हैं, उनका नाम किस आधार पर रखा जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर जयप्रकाश, आप आम्रपाली का जिक्र कर रहे थे।
1: आम्रपाली बहुत लोगों को नगर वधु का बारे में जानकारी होगी
0: जी,
1: और ये हमारी जो पुराना इतिहास है उससे जुड़ा हुआ है। आम्रपाली के पीछे की सोच थी कि आप देखिए तो इसमें नीलम है, दशहरी है, तो दोनों को मिला के आम्रपाली बना
0: जी।
1: और ना तो नीलम को देखे तो दक्षिण भारत में है, बिल्कुल उसमें फल हर साल आता है
0: जी।
1: दशहरी बहुत अच्छा फल आता है, बहुत लोकप्रिय है, लेकिन समस्या क्या है वहाँ पर कि एक साल फल आता है एक साल नहीं आता। लेकिन जब आम्रपाली आई तो ये इसमें हर साल फल आता है
0: जी।
1: आज आम्रपाली का जो पौधा है वो करीब 50 साल का है, जो पहला पौधा आया हाइब्रिड 50 साल का है, पूसा कैंपस में है, और उसमें अभी भी हर साल फल आता है, तो सबसे अच्छी। अब रहे कि आम्रपाली क्यों रखा, उसके पीछे की सोच थी, नगर वधु के बारे में लोग जानते हैं कि जिसे हर घर में जा सकता है, तो सोच ये थी कि ये एक ऐसा पौधा है आम का, ऐसी वैरायटी है कि ये हर घर में जाएगी, इसलिए इसको आम्रपाली रखा गया। और उसके साथ में सोच ये भी थी कि चूंकि ये ड्वार्फ है, बौनी किस्म है, तो आम का जिक्र आता तो हम सोचते हैं कि 10 मीटर का होगा, 15 मीटर का होगा, इतनी जगह लेगा, लेकिन आम्रपाली का ऐसा है कि बहुत कम आकार है, तो अगर किसी के पास 2x2 मीटर की जगह है तो वो भी आम्रपाली लगाता है। और दिल्ली जैसे शहर में बहुत लोगों ने तो बड़े बड़े गमलों में लगा रखा है, जो बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं या पुराने टिन वाले हैं, 4x4 मतलब आप मान के 24 इंच के जो गमले हैं, उसमें भी लोगों ने आम्रपाली लगा रखा है, और उनको अगर 8-10 फल भी मिलता है तो आनंद की अनुभूति होती है
0: जी।
1: तो उस हिसाब से नाम सामान्य रूप से नामकरण की आज की प्रक्रिया है। कई किस्में हैं, जैसे हिम सागर का आपने जिक्र किया, तो चूंकि ये सागर और हिम दोनों को टच करता था इसलिए हिम सागर रखा, तो स्थान के नाम पे भी है। अब जब हम रखते हैं कि पूसा लालिमा है
0: जी,
1: तो पूसा मान लो एक हाइब्रिड है पूसा लालिमा
0: जी,
1: तो इसमें पूसा हमारा इंस्टीट्यूट का नाम से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट की जो पैदाइश हुई वो पूसा से हुई, तो पूसा ब्रांड नेम हो गया। लालिमा इसलिए है क्योंकि वो जब फल पकता है तो बिल्कुल लालिमा लिए होता है
0: जी।
1: तो वो जो उसका देखें तो करेक्टर है,
0: गुण हो गया
1: हाँ, तो जो नाम जो है, नाम बहुत कुछ उसके गुणों को प्रकट करता है
0: जी।
1: जैसे आप पूसा अरुणिमा में जाएंगे तो उसके अरुणिमा में सोल्जर पे, जैसे अरुणिमा जो है वो सूरज के पर्यायवाची के रूप में आता है, तो वहां पर एक लाली सी विकसित होती है, उसको अरुणिमा कहा गया है। इस आकार से मल्लिका का है, तो मल्लिका का फल का आकार बहुत बड़ा है, तो उसके पीछे है कि भाई ये मल्लिका है, कि सारे फलों में सबसे बड़ा है तो ये मल्लिका जैसा है। तो इस तरह से मतलब गुण का जो है बहुत कुछ योगदान है नामकरण की प्रक्रिया में। अब पुरानी किस्में आई हैं उसके पीछे भी है नाम, कि किस स्थान पे हुआ, कौन सबसे पहले उसको आगे बढ़ाया, इसके आधार पे नाम रखा जाता है। अब हमारी जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें है कि आप जिस संस्थान से किसी किस्म को विकसित कर रहे हैं उसका नाम

0: आएगा और उस किस्म से जुड़ा हुआ जो गुड़ है
1: जी।
0: वो नाम में कहीं ना कहीं प्रकट हो और नाम सुविधाजनक भी हो जो सामान्य जन उसको आराम से समझ पाए और ले पाए।
1: यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आमतौर पर हम सुनते हैं कि फलों सब्जियों फूलों के प्रचलित नाम अलग होते हैं और वैज्ञानिक नाम अलग होते हैं, इसके पीछे क्या वजह है?
0: इसके पीछे की वजह है कि वैज्ञानिक नाम ऐसा है कि आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए
1: जी,
0: अगर आपने मैंजीफेरा इंडिका बोला तो सबको समझ में आएगा कि आप मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन अगर कोई मैंगो तो इंग्लिश नाम हुआ, हम आम बोलते हैं, कहीं कोई अमिया बोलता है, तो हमारे देश में ही आम को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब अल्फांजो किस्म है, पूरी दुनिया अल्फांजो जानती है
1: जी।
0: लेकिन अगर आप हापुस बोलेंगे, जितने बाजार में जाएंगे अगर आप जहाँ मंडियां हैं वहां नाम लेंगे तो हापुस आम है
1: जी।
0: और हापुस कई जगह ब्रांड के रूप में चलता है, लेकिन जो लिटरेचर है स्टैंडर्ड लिटरेचर है वहां ये अल्फांजो है। तो जो बोटेनिकल नेम वैज्ञानिक नाम रखने की अवधारणा हुई पिछले 300 सालों में विकसित हुई, लिनियस के बाद काफी आगे बढ़ी तेजी से, तो था कि पूरी दुनिया में एक ही नाम से इसको हर कोई जाने, तो आइडेंटिटी की कोई समस्या ना आए कि आप किसी और नाम से बुलाएं अगला किसी और नाम से बुलाएं, बेफिक्र हो जाइए
1: जी। डॉक्टर जयप्रकाश ये भी बताएं कि बदलते हुए मौसम में ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है वो पेड़ पौधों पर भी पड़ रहा है, ऐसे में आम का जो बौर है अगर समय से पहले वो झड़ जाता है तो फिर पैदावार कम होगी, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या वैज्ञानिक स्तर पर किसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, किसानों की कैसे मदद करें?
0: निश्चित रूप से आजकल देखिए तो भारतीय मौसम का जो फोरकास्ट है वो हर हफ्ते का आता है, 15 दिन का भी आता है, और जितने भी हमारे किसान और किसानों से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो प्रसार के हों या वैज्ञानिक हों, ये सभी इस मौसम का जो भी भविष्यवाणी है उसको फॉलो करते हैं। जो नहीं फॉलो करेगा वो आज की तारीख में काफी नुकसान में रहेगा। और इस साल ऐसा हुआ कि जब फरवरी से मार्च के हम पहले हफ्ते में आए तो तापक्रम बढ़ रहा था, जैसे ही दूसरे हफ्ते में मार्च में आए बारिश शुरू हो गई और तापक्रम कम हो गया, जिसके चलते एंथ्रेक्नोज, पाउडू मिल्ड्यू, ब्लाजम ब्लाइट, 3 बीमारियां आ गई। उसके बाद मैंगो हापर बढ़ गया और बीच में एक गुम्मा रोग आता है जिसको कहते हैं फ्लोरल मालफॉर्म, जब फूल आता है तो फूल पूरा विकसित नहीं होता, वो छोटा छोटा होके ऐसे गुच्छा जैसे बन जाता है, तो वो गुच्छा बन जाने से उसमें नर का हिस्सा बहुत बढ़ जाता है तो फल कम लगेंगे। आपको लगा फूल तो बहुत अच्छा है पर फल कम लगा, इधर ये 3 बीमारियां आ गई। ऐसे में हमारी सलाह हमेशा ये रहती है कि मान लीजिए जब हमको लग रहा है कि एक हफ्ते बाद बारिश का संभावना है और उसके बाद 3-4 दिन तक लगातार मौसम ऐसा ही रहेगा, तो हम पहले से ही कुछ ना कुछ छिड़काव के लिए, रासायनिक छिड़काव क्या हो सकता है उसको करते हैं। गुम्मा रोग आ गया तो जैसे ही आया है उसके इन्फ्लोरेसेंस को सिकेटियर से काट कर सबको अलग करके कहीं नीचे ले जाके मिट्टी में दूर दबा देते हैं, नहीं तो उसके अंदर मैंगो हॉपर जो कीड़ा है वो बैठेगा, अपनी कॉलोनी बनाएगा, उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो आगे चल के जो फल लगा भी है उसका भी इन्फ्लोरेसेंस से वो पेनिकल से रस को चूस लेगा, फल गिर जाता है। तो इस तरह की सामान्य जानकारियां अलग अलग माध्यमों से किसानों को दी भी जाती है और हर ज्यादातर संस्थानों के अपने भी कुछ ना कुछ YouTube चैनल्स हैं या उनके भी मौसम के आधार पे प्रिडिक्शन किया जाता है। और जो MIDH है जो भारत सरकार की स्कीम है, अलग हर राज्य में चलती है, उसके थ्रू भी अलग अलग ट्रेनिंग की जाती है कि अगर आपको इस तरह का मौसम लग रहा है तो आप इन इन केमिकल्स का छिड़काव करें, हालांकि उसका समय और मात्रा क्षेत्र के अनुसार बदलती है। जैसे फूल आने की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत में तो वो नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाती है, हम उत्तर भारत में आएंगे ये प्रक्रिया फरवरी मार्च की है
1: जी।
0: पूर्वी भारत में वो प्रक्रिया जनवरी और फरवरी की है, तो ये अलग अलग मौसम के अनुसार होता है, लेकिन सारे क्षेत्रों में इसके बारे में बराबर जानकारी दी जाती है
1: जी। अवनीश जी, मैं अब आपसे आपके काम करने के तरीके के बारे में जानना चाहूंगी कि कितनी मेहनत लगती है पूरी फसल तैयार करने में, आपका काम कब से शुरू होता है जब एक फसल सीजन जिसे जाता है उसमें?
2: जैसे ही आपने पूछा कि मुझसे जो ये फसल कैसे स्टार्ट होते है, जैसे ही हमारे आम पक जाते हैं
1: जी,
2: उसके बाद हम जो है आम के पेड़ के चारों ओर थाला बनाते हैं, उस थाले के अंदर जो है हम उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको देते हैं, जिससे वो फिर से मिट्टी से ढक देते हैं। जैसे हमने उसमें थाला बनाया लगभग 6 इंच गहरा बनाया और उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले और उसके ऊपर फिर हमने मिट्टी से उसे ढक दिया। इसके बाद बरसात स्टार्ट हो जाती है, बरसात से जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे पौधे की जड़ें उसे अवशोषित कर लेती है। उसके बाद हम जो है अक्टूबर नवम्बर में फिर हम जो है पौधों की खुदाई करवाते हैं। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, जैसे मिट्टी में जो कीड़े होंगे वो सब जो है गर्मी के कारण ठंड के कारण जो होते हैं उसे मर जाते हैं, जैसे ऊपर उसको करते हैं, और जो खरपतवार है वो भी कम हो जाती है। इसके बाद हमारा जो जनवरी का महीना आता है, जनवरी में बड़े देखभाल करनी पड़ती है, जैसे ही कोई नया बोर आया उस बोर को थोड़ा सा तोड़ देते हाथ से, जिससे कि जो फरवरी का महीना होगा फरवरी में उस पर अच्छी तरह

0: फल आ सके
1: जी।
0: इसके बाद हम जो है कीड़ों की देखभाल डेली करनी होती है फरवरी मार्च में। यहाँ कीटनाशक के हमें दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है और जितने भी होंगे हमारे जो हर्बिसाइड का भी यूज करना होता है, क्योंकि हर्बिसाइड भी जो उस समय जो बहुत ज्यादा मार्च का महीना हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा जो है बढ़ता चला जाता है तो खरपतवार भी पौधे के नीचे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनके हम जो है खरपतवार की खुदाई करवाते हैं और कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जैसे ही फल लग जाता है तो जब फल लगभग 50 ग्राम या 60 ग्राम के आसपास हो जाता है तो हम उस फल पर बैगिंग करते हैं। बैगिंग से ये होता है कि जो कीट पतंगे होते हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते, ये हम प्रक्रिया करते हैं, ये चलता रहता है हमारा।
1: और फिर कब फसल मिलती है आपको?
0: हमें जो फसल जो लगभग जून से स्टार्ट हो जाती है, मई के लास्ट से स्टार्ट हो जाती है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आजकल जो नए नए हाइब्रिड किस्में चल रही है इनको भी हम लगा रखे हैं हमने, ये लगभग अगस्त तक चलती है हमारी, इसलिए हमारे जो मई के लास्ट से लेकर के अगस्त के महीने तक हमारा ये व्यवसाय चलता है
1: जी। पहले बारिश का या सर्दी का गर्मी का एक अंदाजा होता था, हम मौसम का अंदाजा लगा सकते थे। आजकल मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, पता भी नहीं चलता और तेज बारिश होती है, आंधी भी है। ऐसे में अगर आपको कभी ऐसा लगे कि समय से पहले फसल को तोड़ना पड़ रहा है नहीं तो वो बारिश में खराब हो जाएगी, तब किस तरह से आप मैनेज करते हैं सारी चीजें, मैं ये जानना चाहूंगी।
0: इसके लिए ना आजकल जो है ना एक मौसम पूर्व अनुमान का वो दिया जाता है, हर एक अलग अलग जो सेक्टर बने हुए हैं सरकार ने बनाए हुए हैं उनसे जुड़े हुए हैं किसान लोग भी, उसमें मैसेज आता रहता है कि जो इस दिन बारिश होने की संभावना है या फिर जो है तूफान आएगा, तो इससे हम सचेत हो जाते हैं
1: जी।
0: हमें पता है कि जो है बारिश होनी है तो हम अपनी फसल की आज तुड़ाई नहीं करेंगे
1: जी,
0: जिससे कि हमें नुकसान होने से बच जाता है। तो मौसम विभाग हमारे लिए काफी सहयोग करता है और हमारी फसल की सुरक्षा होती है,
1: सुरक्षा रहती है जी। और भी सवाल हैं आपसे जानना चाहूंगी मैं, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गाना।
0: गाना तो मैं जो है किसान आदमी हूँ तो किसान भाई छोटा सा ही गाना है कि चल चमेली बाग में, वो वाला गाना सुना
1: जी ठीक है।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की, और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं स्टूडियो में डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डॉक्टर जयप्रकाश, श्री अवनीश कुमार त्यागी। हमारे विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में आम की क्या भूमिका है और हमारी रसोई में जो आम पहुंचता है उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है किसान की। तो अवनीश जी, आपसे ही बातचीत जारी रखना चाहूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप जब फसल तोड़ते हैं उसके बाद उसे जो अगला पड़ाव आपका है वो क्या होता है?
1: फसल तोड़ने के बाद हम उसके जो छटाई करते हैं, जैसे उसमें कुछ आम जो खराब निकल जाते हैं उन खराब आम को अलग रखते हैं, जो छोटे आम होते हैं उसको अलग रखते हैं, और जो फर्स्ट क्वालिटी के होते हैं उस साइज को अलग रखते हैं, उनकी पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग करके फिर उसे मार्केट में लेकर जाते हैं, जहाँ हमारे मार्केट में जो मंडियां बनी हुई है हम वहाँ जा करके वो ठेकेदार होते हैं, हम उनके यहाँ सप्लाई करते हैं उसको, जिससे हमारा मार्केट से में भी माल उड़ जाता है
0: जी। और ये भी जानना चाहूंगे कि क्या हमेशा एक ही कोई किस्म आप उगाते हैं या बदल बदल कर खेती करते हैं?
1: जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो है मई से लेकर के अगस्त तक ये सब प्रक्रिया चलती है हमारी, जिसमें हमें जो उत्पादन मिलता है इसमें कई सारी किस्में होती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हाइब्रिड वेराइटीज है, हाइब्रिड वेराइटीज को भी हमें यूज करना होगा, क्योंकि जैसे समय बदलता चला जा रहा है जो हमारी परंपरागत जो हमारी जो फसलें थी उससे कम उत्पादन हुआ और वो ज्यादा जगह घेरती है, हाइब्रिड वैरायटीज कम जगह घेरती है, इसके लिए हमें समय के अनुसार बदलना है। हम बदले और हमने हाइब्रिड वैरायटीज है पूसा की, मैंने सभी वैरायटीज लगाई हुई है, जय लखनऊ की कुछ वैरायटीज लगाई हुई है, और इनसे हमें मार्केट में अच्छा दाम मिलता है
0: जी। मैं डॉक्टर संजय आपसे अब जानना चाहूंगी, ऑर्गेनिक तरीके जो हैं आम उत्पादन के, उनको बढ़ाने के लिए जैसा कि हमने इनसे भी सुना कि किसान जो है वो कई किस्में जो हैं वो उगाते भी हैं, नई नई तकनीक भी अपनाते हैं, लेकिन कीटनाशकों का प्रयोग भी लगातार करते रहना पड़ता है, तो किसानों के लिए क्या गाइडलाइन आपकी तरफ से होती है और क्या इसका कोई विकल्प भी है?
2: जैसा कि आपने बताया कि प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती, ये दोनों पद्धतियां जो इसकी संस्थान है, एक तो फरीदाबाद में जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है, वो एक तरह से चिन्हित करता है कि किन क्लस्टर्स में किस तरह की पद्धति, और उसमें किसान रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन जाके, वहाँ पे एग्रीस्टैक में रजिस्टर करते हैं कि हमारे पास इतने आम की खिले, इतनी एकड़ की ये किस्म है, और वहाँ जब ये रजिस्टर कर जाता है, जब उसकी सर्टिफाइड हो जाती है फार्म, तब वो सारी जो ऑर्गेनिक खेती की पद्धति होती है उनके इनपुट्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग है, जीवामृत है, घनामृत है, निमास है, ब्रह्मास्त्र है, इस सारी चीजें वो यूज करते हैं, और इसमें देखना ये होता है कि अगर वो ऑन फार्म कर रहा है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं, वहां जितनी पत्तियां गिरती हैं उनको वो बर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है, उनकी खाद बनवाता है, देसी गाय रखता है, गोमूत्र का उपयोग करते हैं, वो सारी पद्धति पूरी तरह बनाई गई है, और इसमें रुझान किसानों का भी बढ़ रहा है, क्योंकि उनसे केमिकल जितना कम उपयोग हो वैसे उत्पाद की विदेशों में बहुत ज्यादा मांग है, और वहां किसान इस तरह की पद्धतियों को अपना रहा है और इस तरह के क्लस्टर और समूह बन रहे हैं जो ऑर्गेनिक उत्पाद पे ही फोकस कर रहे हैं, चाहे वो नीम का ऑयल हो, जैसे कि उसके अलाउड खाद और उर्वरक हैं वो पढ़ते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन में भी वो एकीकृत जो विधि है आईपीएम मॉड्यूल है उसको करते हैं, और नीम बेस्ड पेस्टिसाइड है उसी को यूज करते हैं जिससे कि उसमें अंश भी न बने। यहां मैं एक और बताना चाहूंगा कि अब किसानों में जैसे भारत सरकार ने किया है जीआई, जियोलॉजिकल इंडिकेशन वाले आम है, ये वैसे देसी किस्म है जो क्षेत्रीय में जहां सदियों से उगाए जा रहे थे, और उनके एक विशेष स्वाद होता है, एक उनका कलर या आकार होता है जिसकी मांग जो है विदेशों में बहुत होती है, ऐसे उत्पाद जो है वो करीबन उसको 18 साल तक एक बार जब जीआई सर्टिफिकेशन हो जाता है तो ऐसे उत्पाद जब बाजारों में जाते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में है तो उसको 20-30% एक्स्ट्रा प्राइस मिलता है, और यहाँ जैसा कि आप जानते होंगे जैसे अल्फांसो हाफूज डॉक्टर साहब बता रहे थे, गिर केसर, बैगनपल्ली, मलियाबाद, दशहरी है, हिमसागर वेस्ट बंगाल में काफी चलता है, बागलपुर जर्दालू, बनारसी लंगड़ा है, रतौल लक्ष्मण भोग वेस्ट बंगाल का है, ये वो जगह वो डिस्ट्रिक्ट चिन्हित कहेंगे जहां से ये उत्पाद अगर निकले तो उसे जीआई टैग मिलेगा और करीब 18 साल तक के लिए प्रोटेक्शन मिलता है कि वहां के किसान को प्रीमियम प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में मिले, एक्सपोर्ट में भी इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये प्योर देसी किस्में होती हैं जो उस क्षेत्र से आ रही जहां से जैसे बासमती में जाना जाता है उनकी चिन्हित डिस्ट्रिक्ट होती है, जनपद उनके डिस्ट्रिक्ट चाहे राज्यों में हो चाहे डिस्ट्रिक्ट उनके फिक्स रहते हैं, तो वहीं से उत्पाद आते हैं, तो वैसे किसान इसे बहुत ज्यादा जो है ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग में ले जाते हैं।

0: जिससे कि इसमें और बढ़िया खुशबू हो या कलर हो या स्वाद है वो मिले और विदेशी बाजार में विशेष मांग रहती है। तो इसे बढ़ाना चाहिए किसानों को। एक सवाल जो आप बता रहे थे कि क्या करें जब मौसम बदल रहा है और इस तरह की जो कभी असमय बरसात हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, तो इस समय किसानों को थोड़ा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। हर एक किसान को मैं हमेशा कहता हूं कि एक किसी जैसे दशहरी पे निर्भर ना, उसे जब लगाना हो, जैसे कि इन्होंने बताया हमारे साथी ने कि ये 4 से 5 किस्मों का समूह लगाते हैं। इसमें होता क्या है, कुछ अगैती होती है, कुछ मध्य वाली होती है पकने वाली, और कुछ पछैती होती है। तो इससे जो मौसम की मार है उसे बच पाता है और उसके पास एक और विकल्प होता है कि अगर इसमें उत्पाद नहीं मिला तो बासिक की 2-3 किस्में हैं जिसमें अच्छे उत्पाद मिलेंगे। और एक और मैंने बताया कि उसका उपयोग के हिसाब से, हम ताजा फल खाते हैं, कुछ हमें एक्सपोर्ट भी करना है। जब एक्सपोर्ट वाली प्रायः किस्में हमने देखा कि वो बहुत लेट पकती है, जुलाई अगस्त की रहती है, और उसमें जैसे रेशा कम होता है, भंडारण क्षमता अच्छी होती है, मध्यम मिठास की होती है, खट्टा मीठा टेस्ट होता है, अच्छा रंगीन उस पे कलर होता है। तो इस तरह की जो किस्में जो लगा रहे हैं किसान, अब आगे बढ़ रहा है उसे सिर्फ हमारे देश में ही नहीं अपितु विदेशी बाजार में भी, हमें इसे आगे बढ़ाना है और किसानों को अपने देसी कंजप्शन के साथ हमारे जो आसपास के देश है उनको देने के लिए और विदेशी बड़े मार्केट है उनके लिए भी देखना है और उस तरह की हमें उत्पाद देना है जो वहाँ खरा उतरे और किसानों को अच्छा पैसा भी दे।
1: जी, हमें नए बाजार भी तलाश करने हैं और जो बाजार पहले से हमारे पास हैं उनके अनुसार हमें अपनी गुणवत्ता भी बनाए रखनी है। एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगी, निर्यात का जो मुख्य कारक है वो क्या है? हम मौसम के अनुसार अपना फल तो भेज रहे हैं, लेकिन क्या जिस देश में हम भेज रहे हैं हम उस देश की भौगोलिक परिस्थिति का भी ध्यान रखते हैं, वहाँ के तापमान के अनुसार करते हैं हम निर्यात?
0: देखिए, जैसा कि आम जो है ये तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में हम उगा रहे हैं, हमारे को एडवांटेज मिलता है कि हमारा आम बहुत मीठा होता है, खट्टा मीठा होगा, कलर अलग होंगे, छोटा बड़ा साइज होगा। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, अल्फांसो विश्व प्रसिद्ध है, रतौल है हमारे यहाँ से जाता है, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, केसर है, बैगन पल्ली है, तोता परी है, ये इत्यादि जाति है। इन सभी में देखा गया है कि थोड़ी इसमें भंडारण क्षमता इनकी अच्छी होती है, पहला मांग वो है। दूसरा है ये वहाँ किस तरह के पॉपुलेशन रहती है, जहाँ एशियन पॉपुलेशन है वो मीठा आम खाना चाहते हैं, जो विदेशी लोग हैं, यूरोपीय लोग हैं या जापानी या अमेरिकन हैं, वो मध्यम मीठा चाहिए, वो खट्टा भी चाहिए। तो इस तरह के जो डिमांड है ये इस तरह के जो क्लस्टर बनाए जाते हैं जहाँ इस तरह के किस्मों को उगाना है जो वहाँ के मांग को मीट कर सके, डिमांड को। तो इसी तरह से जो पूसा या IHR बैंगलोर या CISH लखनऊ में है, जहाँ पे आम की वैरायटी, जो नेक्स्ट जनरेशन आम है जो एक्सपोर्ट में भी हमारे को अच्छा पैसा दे। देसी किस्मों को तो हम खाएंगे, हाइब्रिड भी आएंगे जो सघन बागवानी में हेल्प करें, उसको ड्रिप पे ले जाएं, उसको फर्टिगेशन पे रखें, मल्चिंग करें, बैगिंग करें इत्यादि से, जो पूरी प्रोटोकॉल जो है सेफ और पेस्टिसाइड मुक्त उत्पादन होगा, तो आपको अच्छा वो कीमत भी देगा और किसान के पूरे वैल्यू चेन में जो लोग हैं, जो उत्पादक है, जो भंडारण करता है, एग्रीगेशन करता है, जो कोल्ड चेन से ले जाता है, रिटेल में ले जाता है, एक्सपोर्ट करता है, ये सारे जो लोग जुड़े हैं उन सभी को तभी अच्छा मतलब कीमत मिलेगा जब हम सारे लोग एक साथ काम करें। और 1-2 वर्ष पहले से ये हो जाता है कि यहाँ इस साल का उत्पाद आएगा, हम इन बाजारों को तलाशेंगे या उनको देखेंगे, इस तरह से होता है।
1: जी, अब बहुत ही रोचक बातचीत चल रही है और सच में हमने अपनी प्लेट में सजे हुए आम को कभी भी इतने नजदीक से नहीं जाना जितना आज आप सबकी बातचीत के बाद हम समझ पाएंगे। ये बातचीत जारी रखेंगे, उससे पहले मैं आपकी पसंद का कोई गाना आपसे पूछना चाहूंगी।
0: मैं तो चाहूंगा मेरा देश रंगीला जो ये गीत है वो जरूर बजवाएं और हमारे श्रोताओं को सुनाएं जिन्हें उन्हें भी अच्छा लगे।
1: जी बिल्कुल।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं स्टूडियो में और हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की। तो डॉक्टर जयप्रकाश, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, हमारा प्रोसेसिंग उद्योग जो है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर आम की फसल पूरी तरह पककर तैयार नहीं होती तो पल्प, जूस, अचार बनाने जैसी जो हमारी और विधियां हैं उनसे किसानों को लाभ मिल पाए, इसका ध्यान कैसे रखते हैं आप?
1: इसका ध्यान रखने के लिए हमारे यहाँ जहाँ जहाँ पर आपको उद्यान विभाग होगा वहाँ पे उसके साथ में एक विभाग और रहता है जो तुड़ाई उपरांत और प्रोसेसिंग का ध्यान रखता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि राज्य सरकारों के स्तर पे भी फूड प्रोसेसिंग का, भारत सरकार के स्तर पे भी मंत्रालय है और राज्य सरकार के स्तर, इनके अलग अलग डायरेक्टरेट है, यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और हम सामान्य रूप से जब भी किसानों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं कि आम को आपको हर अवस्था में प्रयोग करना है। जो आम बहुत छोटा सा होता है, जिसे हम टिकोरा कहते हैं या टिकोला कहते हैं, जब मुश्किल से 15 ग्राम का होता, अगर वो गिरता है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। उससे भी मैंजीफेरिन नामक रसायन एक होता है, उसके अंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स है, उसका भी एक्सट्रैक्शन हो सकता है। उसको सुखा के अमचूर बनता है, उसके बाद जब आम गिरता तो उसका भी अमचूर बनता था परंपरागत रूप से। गांव में पहले घर में बड़ी माताएं बहनें बनाती थी, आज भी बहुत लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं और उसी को अब हम व्यवसाय के रूप में लेके आ रहे हैं। और जैसे जैसे आपका आम बड़ा होगा, तो आम जब आपका हो गया 60 से 70 दिन का, 80 दिन का, जब उसमें गुठली बन जाती है, तब अवस्था होती है अचार की। जैसे पन्ना बहुत लोग पीते हैं, जब गर्मी बढ़ती है तो आम पन्ना बहुत एक लोकप्रिय कच्चे आम का ही होता है, और उसी कच्चे आम से आगे आप जाएंगे अचार पे जाएंगे। लेकिन जैसे तोतापरी किस्म देखें, मल्लिका देखें, इन किस्मों का काफी प्रयोग, खास करके तोतापरी का प्रोसेसिंग में बहुत उपयोग किया था। जो पल्पिंग इंडस्ट्री है वो हमारा सबसे बड़ा स्रोत है कि जो हमारे किसानों के फल हैं उनको ऑब्जर्व करने का, और वो इंडस्ट्री के माध्यम से होता है। और उस दिशा में भी किस्में विकसित की जा रही है और किस्में आई है। जैसे कहा कि मल्लिका का जिक्र किया, मल्लिका आप फ्रेश भी खा सकते हो और पल्प रिकवरी उसकी बहुत अच्छी है, 75 से 80% तक की पल्प रिकवरी, उसकी गुठली बहुत पतली सी होती है। तोतापरी में भी यही खासियत है, पैदावार अच्छी है और पल्प रिकवरी अच्छी है, तो वहां पर प्रयोग है। एक बार जब आप उससे आगे बढ़ते हैं तो आप जैम कैसे बना सकते हैं और मिक्स्ड फ्रूट मिक्स जैम में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है। जितना हम फ्रेश आम का प्रयोग करते हैं उससे

0: कहीं हम प्रोसेसिंग का प्रयोग करते हैं। पिछले कुछ सालों में समस्या आई थी खास करके आंध्रा में, क्योंकि फल बहुत आ गए थे और पल्पिंग इंडस्ट्री के पास स्टोर करने की क्षमता नहीं रह गई, इसलिए थोड़ा रेट कम मिला था। लेकिन इस साल ये हालत काफी बेहतर है क्योंकि फसल थोड़ी सी कमजोर है, जिसके चलते ये सारे फलों का दाम अच्छा मिल रहा और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अच्छे से ड्राइव कर रही है। और हमें व्यवसायिक रूप से तो करना ही करना चाहिए, हमें एक समूह के रूप में, एक व्यक्ति और परिवार के रूप में भी आम का कुछ हिस्सा अपने प्रयोग में, चाहे अचार के रूप में करें, खटाई के रूप में करें, खुद भी बनाएं। इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका कुछ ना कुछ लागत किसान को मिलेगा, नहीं तो आंधी आई तमाम फल गिर गए
1: जी।
0: अब वो अचार में नहीं जा सकता है, किसी और काम में नहीं जा सकता है, लेकिन उसको काट के सुखा के उसका खटाई बन सकता है, उसका अमचूर बन सकता है, अलग अलग मसालों में प्रयोग हो सकता है। तो इसको हम एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है गांव के रूप में, कुछ महिलाओं का समूह मिलाकर इस स्तर पे भी काम किया जा रहा है, लोग करते हैं और इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है
1: जी। यानी आम को भी अगर हम अलग अलग स्वरूप में इस्तेमाल करेंगे तब भी उसका लाभ किसानों तक पहुंचेगा
0: निश्चित रूप
1: जी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि वैज्ञानिकों की लैब होती है उसमें जो रिसर्च चल रही होती है और किसान के खेत के बीच बहुत अंतर होता है, लेकिन आप ये जो दूरी है इसे कैसे कम रखते हैं, कैसे किसानों से सीधा संपर्क करते हैं या अपनी समस्याएं लेकर वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे समाधान उन्हें मिल सकता है?
0: तीन चार रास्ते हैं, तीनों चारों पे काम होता है, पैरेलल रास्ते हैं। जैसे हमारी कोई नई किस्म आई, नई किस्म जब भी आती है तो हम उसके लिए अपनी फील्ड पर, मान लीजिए हमारा कोई आम की नई किस्म है, हमने मैंगो फील्ड डे बनाया, जब फील्ड डे बनाते हैं तो उसमें हम किसानों को भी बुलाते हैं
1: जी,
0: उस किस्म के बारे में बताते हैं। उसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स हैं, अगर एक्सपोर्ट करने लायक वैरायटी उनको भी बुलाते हैं। जो नर्सरी का योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े स्तर पर पौधों का जो निर्माण और उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है वो नर्सरी के माध्यम से होती है, हम उनको भी बुलाते हैं ताकि सभी लोग एक प्लेटफार्म पर आए और वहां से जो जिसके हिस्से का काम हो वो पा जाए
1: जी।
0: इसके अलावा अलग अलग निजी क्षेत्रों को हम लाइसेंस भी देते हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट हैं उनको नई किस्में उपलब्ध कराते हैं और बीच बीच में हमारे प्रशिक्षण चलते हैं। प्रशिक्षण डायरेक्ट किसानों का भी होता है और एक ट्रेनर्स ट्रेनिंग होता है
1: जी।
0: जैसे जो राज्य सरकार के स्तर पर अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, डायरेक्ट किसानों से जुड़े हैं, वो आते हैं हमारे स्तर पर, हम उनको ट्रेन करते हैं और वो अपने स्तर पर बहुत बड़े समूह को फिर ट्रेनिंग दे पाते हैं। और इन टेक्नोलॉजी को और पौधों को दोनों को हम किसानों के स्तर तक ले जाते हैं। माध्यम उसमें आपको कृषि विज्ञान केंद्र भी रहता है, जो राज्य सरकार की प्रसार सेवाएं हैं, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू भी होता है। और कुछ किसान बहुत जागरूक होते हैं, वो स्वयं भी काफी सक्रिय होते हैं और उनके माध्यम से उनको काफी मदद मिलती है, क्योंकि कोई नई वैरायटी आप कहो कि आप 10 एकड़ लगा लो, कोई नहीं लगाता, मगर किसी एक किसान ने 100 पौधा लगाया, उसको देख के हो सकता है कि 5,000-10,000 किसान प्रभावित हो जाते हैं और फिर उस मॉडल को अपनाते हैं
1: जी। मैं अब अवनीश जी आपसे ये जानना चाहूंगी, देश भर में जब आम का मौसम होता है तब मैंगो फेस्टिवल होते हैं, आम महोत्सव होते हैं, अलग अलग आयोजन होते हैं, उनमें एक साथ बहुत सारी किस्में हमें चखने को मिलती है। एक बात मैं अक्सर बुजुर्गों से ये सुनती हूं कि फल में अब पहले जैसी खुशबू नहीं रही, मिठास तो कुछ कुछ फलों में ज्यादा है, लेकिन कहते हैं कि पहले जैसी महक नहीं है, तो आप इसकी वजह क्या है, क्या कहेंगे? क्या फल पहले से खराब हो गया है या गुणवत्ता बदली है या फिर अलग किस्म है? इसलिए
2: देखिए, जो है पौधा तो वही है जो अब से जो है 200 साल पहले 300 साल पहले थे जो पौधे, आज भी पौधे वही हैं, लेकिन जो हमारा वातावरण में चेंज आ रहा है, इस वातावरण में चेंज के कारण हमारे जो छोटे छोटे पहले देखा होगा जब पशु ये पक्षी हुआ करते थे, छोटे छोटे कीड़े हुआ करते थे तो उनको पक्षियां खा जाते थे
1: जी,
2: उससे फल को नुकसान नहीं होता था। अब पक्षी भी बहुत कम हो गए हैं, हम अलग अलग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उस पेस्टिसाइड के कारण जो छोटा सा इंसेक्ट होगा उस पेस्टिसाइड के यूज से वो मरा, उसे पक्षी खाता है तो पक्षी को भी वो बीमारी हो जाती है। इस कारण हमारे अलग अलग जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं ये लगातार हम दवाओं का प्रयोग करते हैं और इससे हमारे फलों की गुणवत्ता में भी कमी आई है,
1: कमी आती है।
2: इनका मेन कारण है कि हम जो है पेस्टिसाइड यूज करते जाते हैं
1: जी, वो करने पड़ते हैं,
2: वो करने पड़ते हैं, नहीं करेंगे तो फिर जो है फल पैदा नहीं होगा।
1: हम इस तरह की शिकायतें भी आमतौर पर सुनते हैं कि आम खाने से चेहरे पर कहीं दाना हो गया, या बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पहले आम को पानी में भिगो कर रखिए नहीं तो जो गर्मी होगी वो आपको नुकसान करेगी। तो सही तरीका क्या है आम को खाने का, ये आप बताएं।
2: सही तरीका है कि जब पेड़ की जो डाल का जो आम होगा वो खाना चाहिए, लेकिन हर सभी के पास जो है बाग नहीं है, हर सभी के पास ये नहीं है। अगर पाल का भी आम है तो उसे हम लगभग 4 या 5 घंटे तक पानी में भिगोए, उसके बाद 1 घंटे बाद पानी से निकालने के बाद 1 घंटे बाद उसको खाया जाए तो उसमें टेस्ट आ जाता है
1: जी। और वो उसके ऊपर अगर कुछ छिड़काव किया गया है कुछ है वो भी धुल जाएगा,
2: वो भी सब धुल जाता है
1: जी। डॉक्टर संजय सिंह आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
3: जैसा कि अभी पूरी चर्चा में बात चल रही थी कि अगर आम को अगर बढ़ाना है और ये हमारी देश की पहचान है तो किसानों को वैज्ञानिक पद्धति, चाहे वो जैविक करे, चाहे नेचुरल फार्मिंग करे, चाहे वो हाईटेक हॉर्टिकल्चर करे
1: जी।
3: अब तो जैसे जापानी लोग हैं वो तो रोटेटेड कल्टीवेशन के अंदर ले गए कि जिसे बिल्कुल कंट्रोल्ड कंडीशन में जो आम को जब चाहे साल के उसमें पैदा कर लेते हैं। तो किसी को भी अगर अपनाते हैं तो वहाँ साइंस लेड जो हम कहते हैं तकनीक है
1: जी।
3: जो प्रोवाइड है, जो हमारे जो रिसर्च संस्थान है वो दे रहे हैं, चाहे वैज्ञानिक सलाह पे कर रहे हैं, तो समय आ गया है कि वो वैज्ञानिक सलाह के साथ और हमें सम्मिलित होना पड़ेगा, एक साथ समूह बनाना पड़ेगा। छिटपुट छिटपुट जो है वो आप अपने घर के लिए, साथ के बाजार के लिए कर सकते हैं, लेकिन उससे लेकर आप बड़ा कुछ नहीं सोच सकते। तीसरी बात यह है कि जब एफपीओ बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं या प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं, तो किसानों को भी चाहे वो खाद खरीदे, चाहे कीटनाशक खरीदे, चाहे ऑर्गेनिक में करें, इनपुट लेने में भी कीमत में बहुत कमी मिलती है कि बल्क परचेस करते हैं, और जब उसके विपणन में भी जाते हैं, जब उसको तोड़ने के बाद आप मार्केट में बेचते हैं किसी भी समूह को, चाहे रिटेल चेन वाले हों, चाहे वो बड़े ट्रेडर्स हों, तो वहां भी कीमतों पे आपका से रहता है कि आप प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। ये बहुत हद तक देखा गया है अंगूर के व्यापार में या उसके उत्पादन में कि वहाँ के किसान जो हैं बहुत संगठित हैं और इस तरह से बढ़ा। तीसरा चीज है कि जो आज हमारे पास युवा बहुत है, आईटी के बच्चे हैं, एमबीए के बच्चे हैं, बाहर किस तरह भेजना है, उसके प्रोसेसिंग में क्या करनी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से हम रिटेल चेन में बहुत लंबे समय तक आम की उपलब्धता करें, तो हम इस तरह से इस पूरे आम के जो व्यवसाय है, जो उसके उत्पादन से लेकर निर्यात तक, ये पूरी चेन को दुरुस्त कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर। और समय के साथ हर एक को मैं करता हूँ कि प्रशिक्षण लेनी चाहिए
1: जी।
3: और जाके देखना भी चाहिए जैसे विश्व के अन्य देशों में किस तरह से खेती की जाती है, और उस तरह की तब्दीली हमें भी लाना पड़ेगा। और जैविक और हमारा जो प्राकृतिक खेती है, ये तो बहुत बड़ा एक मैं कहूँ कि हमारे देश को मिला कि कुछ राज्यों में जहाँ दूर दूरस्थ हमारे जो जनपद है वहाँ तो कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होते, तो वहाँ के उत्पाद प्राय बाजार में अच्छी कीमतें देती हैं, और वहाँ किसान को भी और हमारे कृषक समूह को भी लगना पड़ेगा, जिससे कि जितने भी उत्पाद हैं उसके जो है मैं कहूँ कि एक तरह से सारे स्टेक होल्डर एक साथ आएं, जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग उसके इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो लोग उसके निर्यात और कोल्ड चेन से जुड़े हैं या प्रसंस्करण से जुड़े हैं, तब जाके ये हमारा आम जो है विश्वव्यापी फल तो है ही है, सभी जगह मांग भी है, लेकिन हम उसके मानकों पे खरे उतरेंगे और ये इंडस्ट्री को और इसके सारे जुड़े जो लोग हैं उनको फायदा होगा
1: जी। चलते चलते एक और सवाल मेरा आपसे, अंतिम सवाल, आम उत्पादन में और जो अनुसंधान हो रहे हैं उसमें एआई और ड्रोन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है क्या?
3: एक बात हो रही है जैसे कि हम जब उत्पादन से करते, यहाँ पे अब एक सुना होगा आपने क्लीन प्लान प्रोग्राम जो भारत सरकार ने किया है कि हमारी नर्सरियां एक्रेडिटेड हो, जो हमारे देश में पौध तैयार हो उसकी ट्रेसिबिलिटी रहे, आपने दशहरी लगाए और पता चला कुछ दिन के बाद वो लंगड़ा निकल गया या कोई और किस्म निकल गई, बीजू निकल गया, इस तरह की बात ना हो, तो इसमें नर्सरी से लेकर और जब हम उत्पादन कर रहे हैं उनमें कौन सी जो उसमें जब भी हम उसमें कोई भी सस्य क्रिया करते हैं या खाद डाले या जो कीट या रोग प्रबंधन करें, तो उसकी सारी प्रणाली रिकॉर्डिंग होती है, ट्रेसिबिलिटी का एक मुख्य माध्यम है। फिर उत्पाद बनता है, आपने देखा होगा कि अब जितने भी डब्बा बंद हमारे उत्पाद आ रहे हैं, चाहे फल हो सब्जी हो, उस पे आप बारकोडिंग देख रहे होंगे, QR कोड देख रहे होंगे, ये सारी चीजें दर्शा रही हैं कि उपभोक्ता ये जानना चाहता है कि उत्पाद जो है वो किस तरह तैयार किया गया, किन परिस्थितियों से गुजरा है और कैसे उसके पास पहुंचा है, तो उसे भी अब AI और ये जो है ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, पैकेजिंग, अब ये सारी जो है सेंसर बेस्ड होने लगी हैं। किसी में अगर कोई अवगुण है या कुछ में कुछ रोग लगा हुआ है या उसमें फल मक्खी का इंफेक्शन है, ये अब इमेजिंग के द्वारा सेंस करके हम निकाल देते हैं
1: जी।
3: और सेंसर भी इस तरह से आ गए हैं कि फल अगर खराब हो रहा है, अगर हमने कहीं दूरस्थ भेजा हुआ है, तो ये उसमें कलर चेंज है, बायो सेंसर्स कहते हैं, वो उसको देखने के बाद ही बोल सकते हैं नहीं अब खाने योग्य नहीं, तो आप फेंक सकते हैं। तो जो भी AI है, जो हमारा जो सरकार डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, तो इस तरह से सारी चीजें फार्म से लेकर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन तक हम डिजिटाइज करके इस पूरे टेक्निक ड्रिवन इस पूरी इंडस्ट्री को कर सकते हैं। और ये क्षमता है और हमारे कई युवा जो हैं इसमें सारे स्पेशलाइज्ड हैं और सभी को एक साथ आना है। मैं सभी को कृषक बनने को नहीं कहता हूं, लेकिन कृषक बनने के साथ इस पूरे वैल्यू चेन में आप स्टेक होल्डर बनिए और एक दूसरे को हेल्प करिए और सहयोग करिए और ये इंडस्ट्री फलेगा फूलेगा
1: जी। और ज्यादा से ज्यादा युवा अगर जुड़ेंगे नई तकनीक के साथ तो इसमें भी आधुनिकता आएगी।
3: बिल्कुल
1: जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने हमें बताई है।

0: और हमने इस इंडस्ट्री को भी अच्छे से जाना आज आपके माध्यम से। डॉक्टर संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे। डॉक्टर जयप्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक फल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से आप आए। और श्री अवनीश कुमार त्यागी, नर्सरी आप चलाते हैं और आम के किसान हैं, गाजियाबाद से आप हमारे बीच आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अपने किसान भाइयों को तो हम इतना ही कहेंगे कि आप नई नई तकनीक अपनाइए, जो सुविधाएं सरकार विभिन्न संस्थानों के माध्यम से, विभिन्न परिषदों के माध्यम से आपको देना चाहती है, उन सुविधाओं का लाभ उठाइए, अपने आप को अपडेटेड रखिए। साथ ही जो युवा पीढ़ी है उसका भी साथ लीजिए, तो आपको आम के आम, गुठलियों के दाम मिलते रहेंगे और दांत खट्टे नहीं होंगे इतनी मेहनत करने के बाद। तो हम यही कामना करते हैं कि जो फलों का राजा आम है वो दुनिया में भी भारत का नाम चमकाता रहे। इसी कामना के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से अनुमति लेती हूँ। कार्यक्रम संयोजन था शिव नंदन लाल का और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स और शाहनवाज खान। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: वक्त हो चुका है इस वक्त के समाचारों का। बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक आर्थिक वृद्धि को लेकर चिंताओं और रुपए की लगातार कमजोरी के बीच एफपीआई अर्थात विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जून के पहले पखवाड़े में भारतीय शेयर बाजार से 62,853 करोड़ से अधिक की निकासी की है। NSDL अर्थात नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक FPI भारतीय शेयर बाजार से लगभग 2,87,00,000 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। म्यांमार में कल रात 3.8 तीव्रता से भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भारतीय समय अनुसार रात 11:31 पर आए भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। म्यांमार मध्य और तीव्र भूकंप तथा सुनामी के खतरे के प्रति संवेदनशील माना जाता है। पालघर में महिला और उनकी नाबालिग बहन के से कथित तौर पर दुष्कर्म तथा ब्लैकमेल करने के मामले में फरार 23 वर्षीय युवक व्यक्ति को गुजरात में भरूच से गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारी ने आज इस जानकारी दी कि गिरफ्तारी आरोपी की तलाश में कई राज्यों में चलाए गए अभियान के बाद हुई। फीफा विश्व कप 2026 में स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद विश्व कप में जीत दर्ज करते हुए 1-0 से हेती को हरा दिया है। जॉन मेकिंग ने पहले हाफ में किए गए गोल की बदौलत स्कॉटलैंड ग्रुप सी में सर्वश्रेष्ठ पर पहुंच चुका है। एक अन्य मुकाबले में ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। ये थे इस घंटे के समाचार।

मेरे मन ये बता रहे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है मुझको बता मिथवा। यह 107.1 मेगाहर्ट्ज़ ज़ेरे एफ़एम रेनबो पर आप सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है तन्मय और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक कैफे। जी हाँ, संडे की दोपहर 14 तारीख जून का महीना और वक्त हो चुका है 12:07 और दोपहर के 2 बजे तक मेरा आपका साथ रहेगा। तो आप भी अगर इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, जो कि हम बिल्कुल चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, क्योंकि अधिकांश जीवन तो आजकल हम लोग व्हाट्सएप पे ही बिताते हैं। और अगर आप फोन करना चाहते हैं तो मुंबई का कोड 022 और हमारा नंबर है 2228715789। जी हाँ, ये 2 जादुई नंबर, इसके जरिए आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और हम तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं और आपके विचारों को अपनी आवाज़ देके मैं तमाम सुनने वालों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। जी हाँ, हम आज बहुत सारे प्यार भरे गाने लेके आए हैं जो कि आप सुन पाएंगे 1 बजे हमारा हिट एंड कार्यक्रम में। और अभी जो है तो इसी मस्ती वाले गाने हम आपको सुनवाने वाले हैं, तो ऐसे ही होना चाहिए। भाई संडे का दिन है, अब संडे का दिन जो है छुट्टी का दिन होता है, आराम करना चाहिए और आराम करने का काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज बहुत सारे लोग संडे को जो है अपना काम लेके बैठ जाते हैं, नहीं साहब ये काम अधूरा है, ये करना है, वो करना है, वो सब ठीक है, लेकिन आराम कीजिए, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स कीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। मस्ती करनी तो मस्ती कीजिए, घर के ऐसे तमाम काम होते हैं जो कि आप सोचते हैं कि हम निपटा लेंगे, वो निपटा सकते हैं। फ्रेंड्स से मिलने का वक्त नहीं मिल रहा है तो ये भी आपके पास अच्छा दिन है जहाँ पे आप फ्रेंड्स के साथ मुलाकात कर सकते हैं, समय बिता सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिलहाल तो अभी आप जो है इस कार्यक्रम में जुड़े रहिए और हमारे इस खूबसूरत गानों की पेशकश को एंजॉय कीजिए। अगला गाना मैं आपको सुनवाने वाला हूँ, थोड़ा सा मोहब्बत वाला गाना है, अलग सी पेस है, आतिफ असलम, मोनाली ठाकुर और प्रिया पांचाल की आवाज। जी, आई एंजॉय दिस वन।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जी ऐसा म्यूजिकली और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक कैफे और मेरा नाम है तन्मय और आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज के बारे में जो कि होती तो बहुत छोटी सी है लेकिन हमारी जिंदगी में उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। क्या आपने सोचा है कि ऐसी कौन सी चीजें जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपको? जी हाँ, अभी से विचार किया है। कुछ लोग कहेंगे साहब पैसा बहुत ज़रूरी है जीवन में। जी हाँ बिल्कुल, पैसा ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग कहेंगे साहब घर परिवार ज़रूरी है, कुछ लोग कहेंगे साहब नौकरी ज़रूरी है, कुछ लोग कहेंगे ये ज़रूरी है वो ज़रूरी है, कुछ लोग कहेंगे सेहत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सभी ज़रूरी होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होती हैं। लेकिन चलिए आप मुझे सोच के बताइए कि भाई आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़, सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ कौन सी है? क्योंकि मैं तो आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ इस गाने के बाद। और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं शंकर महादेवन और एलिसिया मेंडोसा की आवाज में। और उसके बाद फिर जो है हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो कि मुझे लगता है, ये मैं अपने विचार बता रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि जो मेरे विचार हैं वो आपके विचारों से मिलें, या हो सकता है कि मेरे ही सही हो आपके गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, तो आज हम वही चाहेंगे कि आप भी अपनी हमारे साथ सोच शामिल कीजिए हमारे इस कार्यक्रम में और हम ऐसे ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगला गाना शुरू करें, बहुत ही खूबसूरत गाना है, मुझे बहुत पसंद है और इस गाने को एंजॉय कीजिए। किसी की तारीफ करना हो तो ये गाना आप गा सकते हैं। लेकिन शंकर महादेवन जैसी आवाज होना बहुत मुश्किल है ना।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: जी आप सुन रहे हैं 107.1 MHz FM Rainbow पर कार्यक्रम म्यूजिक कैफे और मेरा नाम है तन्मय और हाँ आपको आज थोड़े से मस्ती भरे गाने सुनवा रहे हैं क्योंकि मस्ती का दिन है, संडे का दिन है। अब कुछ लोग आराम करना चाहते हैं तो आप आराम भी कर सकते हैं, मस्ती करना चाहते हैं तो वो भी करना चाहिए। और वैसे भी जो है हम लोग ना आजकल खुश होना हमने पता नहीं हम भूल सके हैं, हम लोग खुश होते ही नहीं है, हर चीज़ की परेशानी, जीवन कैसे अरे साहब क्या बताएं क्या कहानी बोले आपको, मतलब पूरे समय जो है हमारे चेहरे पर मायूसी रहती है, उदासी रहती है, कभी चेहरे पे मुस्कुराहट आती नहीं है और कभी आ भी जाती है तो वो इतनी फेक होती है कि सबको नजर आ जाता है। जी हम बात कर रहे थे मन की शांति की क्योंकि जीवन में वही बहुत जरूरी है। ऐसे में मन की शांति पाने में सबसे पहला कदम क्या है, चलिए मैं आपको तरीके बता देता हूं कि जो कि आप खुद भी कर सकते हैं कि कुछ समय खुद के लिए निकालिए। जी हाँ हमारे पास हर चीज के लिए समय है, हमारे पास जो है परिवार के लिए समय है, दोस्तों के लिए समय है, हमारे पास काम के लिए समय है, किस किस के लिए समय नहीं है, लेकिन क्या हमारे पास खुद के लिए वो समय है, यानी कि वो चीज़ जो कि आप करना चाहते हैं, अक्सर आप पसंद करते हैं लेकिन आप नहीं कर पाते हैं, उसको क्यों नहीं करते हैं। दिन में केवल 15 से 20 मिनट ही यदि हम बिना मोबाइल के, जी हाँ बिना मोबाइल के, अगर ना हम बिना किसी व्यवधान के यानी कि बिना किसी डिस्टर्बेंस के अगर हम साथ बिताते हैं तो मन को राहत मिलती है। शांति बाहर नहीं भीतर से होती है, ये तो आपने सुना ही होगा ना, और बस उसको सुनने के लिए थोड़ी सी खामोशी चाहिए। लेकिन अभी तो मैं आपको कोई खामोशी देने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं आपको अगला गाना सुनवाने वाला हूं। ये भी जो है बहुत ही अच्छा गाना है, शफकत अमानत अली खान की आवाज़ में है, सुनिधि चौहान है। और अब आप लोग का एक टास्क है, चलिए आपको एक टास्क देता हूं, वो टास्क ये कि इस गाने को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इंजॉय तो करिए करिएगा, लेकिन इसमें जो है ये ध्यान रखिए या ये काउंट करिए कि इस गाने में बिन तेरे कितनी बार कहा जा रहा है। और जो सही जवाब दे देगा उसको हम कोई प्राइज नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास कोई प्राइज नहीं है देने के लिए। लेकिन चलिए आप मुझे मैसेज करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 8657661071 या हमारा फोन नंबर 2281578722815789। जी हाँ तो इस गाने को सुनिएगा और देखिएगा कि इस गाने में बिन तेरे कितनी बार कहा जा रहा है।

जी हाँ साहब, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है शफकत अमानत अली खान और सुनिधि चौहान की आवाज़ में, बिन तेरे, फ्रॉम द फिल्म आई हेट लव स्टोरी। अब ये हम कहते ज़रूर हैं लेकिन हम हर किसी को पसंद आती है लव स्टोरीज़, और हम बहुत ही मन से स्टोरीज़ को सुनते हैं। और ख़ास तौर से कई बार ऐसे गाने जो होते हैं, ऐसी स्टोरीज जिसमें कि हमें लगता है कि हमारी ही परिस्थिति, हमारी ही सिचुएशन, हमारी ही कहानी बयां हो रही है, तो वो गाने या वो जो फिल्म है हमें और अच्छी लगती है। जी हाँ, अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे जवाब दिए कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स बिन तेरे कहा गया था। अब एक शख्स है बहुत बढ़िया, उन्होंने कहा था कि साहब मैंने कोशिश की लेकिन फिर बीच में फोन आ गया और चक्कर में फिर मेरी काउंटिंग जो है वो मिस हो गई, तो अब मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैंने भी काउंट नहीं किया क्योंकि मैं आप पे निर्भर कर रहा था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जी थोड़ी बहुत मस्ती होनी चाहिए और हम अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो है कुछ और बातें हम करते हैं कि जो दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि अपनी प्राथमिकताओं को समझना बहुत जरूरी होता है। हर काम जरूरी नहीं होता, जी हाँ समझ लीजिए, हर काम जीवन में जरूरी नहीं होता है, अपेक्षा पूरी करना संभव भी नहीं है कि हम सोचें कि हर काम जो है पूरा करते जाएं। हमें कभी कभार ना कहना भी सीखना पड़ता है और कभी कभी करना भी पड़ता है, और अपनी ऊर्जा सही जगह लगाने की बहुत जरूरत है, तभी जो है हमारा मानसिक तनाव जो है कम हो पाएगा। अदरवाइज हम पूरे समय जो है इसी चीज में बैठे रहेंगे कि भाई हम कैसे लोगों को ना बोल दें, कैसे वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इसी खूब बात पे सुनिधि चौहान और शाहिद मालविया का की आवाज में बहुत ही मस्ती भरा गाना सुनिएगा।

अब ये हम आपको अगले कार्यक्रम में बनाएंगे कि भाई ये राधा सच में बनी है नहीं बनी है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं म्यूजिक कैफे और मेरा नाम है तन्मय। हम बात कर रहे हैं मन की शांति की, और एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपनी पसंद की किसी ऐसी गतिविधि के लिए समय निकालें, चाहे वो समय लिखना हो, चाहे वो संगीत के लिए हो या कुछ गाने लिखने का काम हो। जैसे कि हमारे दोस्त संदीप मकड़ साहब जो है, जो कि हमें जलंधर से याद कर रहे हैं, और वो भी गाने लिखने का बहुत शौक रखते हैं और अच्छा लिखते भी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि साहब मैंने वो पिछला गाना सुना है, मेरे हिसाब से 24 बार बिन तेरे कहा गया था। तो चलिए

0: हैं कि वो कितने सही हैं, लेकिन मैं कह रहा था कि अगर आपको कोई चीज अगर ना करनी हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और किताब पढ़ना, बागवानी करना, टहलना, या कोई पुराने शौक, या ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमारे मन को फिर से ऊर्जा देती है और हमें संतुलित करती है, तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। और आपको स्पोर्ट्स खेलने का शौक है तो आप बिल्कुल खेलिए, और आपको देखने का शौक है बिल्कुल देख सकते हैं, जैसे कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच में T20 वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है जो कि 7 बजे होगा, और वो भी आप देख सकते हैं। अब क्योंकि अगर स्पोर्ट्स की बात आई है, एक जुनून जो होता है वो होता है, एक पैशन होता है, एक डिटर्मिनेशन होता है, एक जोश होता है, तो चलिए इस जोश को हम और आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गाना।
1: This is the story of a team and they're playing for the one and only dream to win the World Cup. So you better back up, 'cause they're coming on now when they're

स्टिक पड़ सकती है। जी मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूं और आप भी मत करिएगा। जी हाँ, बहुत ही जोश भरा गाना था और आज हम चाहते हैं कि भाई इंडिया टीम जो है आज कारनामे अपने दिखाए और ये मैच जीते, और मैं तो डेफिनेटली इसको देखने वाला हूं, आप भी देखिएगा। हम बात कर रहे हैं मन की शांति। जी हाँ, वैसे भी इंडिया जीत जाती है कोई भी स्पोर्ट्स तो मन को शांति तो खैर मिलती है, लेकिन मन की शांति के लिए कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक अभ्यास है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब हमारे वर्तमान में हम जीना सीखते हैं, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते हैं और जीवन का संतुलन बना के अगर ना हम रखते हैं तभी सच्ची शांति का अनुभव होता है। जी हाँ, कोशिश कीजिएगा। याद रखिए, जीवन में जो सफलता होती है ना वो महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मन की शांति उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मन शांत हो तो खुशहाल जीवन की सबसे बड़ी जो नींव है वही होता है। दुनिया की दौड़ कभी भी खत्म नहीं होगी, लेकिन एक दिन कुछ पल अपने मन के लिए निकालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सुकून भी जीवन की जरूरत है, सिर्फ चाहत ही नहीं है। तो जब भी आपको मौका मिले कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको खुशी मिले, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। दिस इज स्माइल इज अ कर्व विच कैन सेट लॉट ऑफ थिंग्स स्ट्रेट। और अच्छी बात यह है कि भाई हमारे काफी सारे दोस्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, और आपको बता दूं कि 1 बजे के बाद मैं उन सभी लोग के बारे में आपको और बताऊंगा, उनका नाम लूंगा, उनके विचार व्यक्त करूंगा। हमारा अगला कार्यक्रम जो है वो होगा 1 बजे, अगला पड़ाव मान लीजिए वो होगा हिट एंड हॉट, जहां पे हम कुछ प्यार भरे रोमांटिक गाने चलाने वाले हैं धीमी गति के। जी हाँ, अब थोड़ा सा गति को हम धीरे करेंगे। और अच्छी बात यह कि हमारे पास देखिए एक नहीं दो दो शिल्पाओं के फोन आए हैं। एक हमारे पास जो है वो अंधेरी से हमें शिल्पा याद कर रही हैं, उन्होंने कहा कि वो इस वक्त कुछ नहीं कर रही, कार्यक्रम को सुन रही हैं, डांस कर रही हैं। बहुत अच्छा, इसका फायदा ये भी होगा कि इससे आपकी कैलोरीज बर्न हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। और एक हमारी शिल्पा दोस्त हैं जो कि हमें बहुत दूर लगभग 150 किलोमीटर दूर पुणे से याद कर रही हैं। शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी दूर से आपने हमें याद किया और इन कार्यक्रम को आप सुन रही हैं और इंजॉय कर रही हैं। हमारे साथ देते रहिएगा। अगला गाना मिक्का सिंह की आवाज में हम मौजा ही मौजा करेंगे, और उसके बाद फिर 1 बजे के समाचार होंगे, और 1 बजे के बाद फिर गीत संगीत के सफर को हम थोड़ा सा और धीमा और अच्छा, खूबसूरत और अच्छा बनाने वाले हैं प्यार भरे गानों के साथ, तो थोड़ी सी अलग सी रौनक होने वाली है। और बाय द वे, मेरा नाम तन्मय है। तो किसी ने मुझे मैसेज करके पूछा आपका नाम क्या है।

0: रानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: जी हाँ, म्यूजिकली योर्स या एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट एंड हॉट और मैं हूं आपके साथ तन्मय। वक्त हो चुका है 1:05 और दोपहर 2 बजे तक मेरा आपका साथ रहेगा। इस पड़ाव में हम क्या करने वाले हैं, इस पड़ाव में जो है आप हमें कुछ अपने पसंदीदा गाने जो है कई बार आप हमें बता के भेज सकते हैं टू व्हाट्सएप और या हमें कॉल करके, और मैं यही रिक्वेस्ट करूँ कि आप हमें 2-3 गानों की ऑप्शंस दीजिएगा और उसके बाद फिर मैं उन्हीं में से कोई चूज़ करके आपके लिए एयर करूँगा। और आपको बता दूँ कि आज हम प्यार भरे गाने लगाने वाले हैं और हम साथ ही साथ कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की बातचीत भी करने वाले हैं, जहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप गानों के साथ साथ जो है अपने विचार भी बिल्कुल भेज दीजिए और किस चीज़ के बारे में है मैं आपको इस गाने के बाद बताऊंगा। अगर आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो 8657661071 हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मुंबई का कोड 022 और हमारा नंबर है 2281578722815789। और कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं इस बहुत ही खूबसूरत प्यार भरे गाने में, प्यार से डूबे हुए गाने में, तुलसी कुमार और दर्शन रावल की आवाज़ में तेरे नाल।

बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने सुना दर्शन रावल और सुनिधि और तुलसी कुमार की आवाज़ में। और आज जो हम इस पड़ाव में बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि अक्सर आपने जीवन में हर व्यक्ति ने किसी न किसी व्यक्ति ने ये स्थिति का सामना किया होगा जब उसे पता चलता है कि उसकी एब्सेंस में उसकी अनुपस्थिति में लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं होता आपके साथ या कभी हुआ ही नहीं हुआ? कौन ऐसा शख्स है जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहा है जो ये मानता है कि भाई उसके पीठ पीछे जो है उसकी कभी बुराई नहीं की गई है और उसके बारे में बात नहीं की गई है? जाहिर सी बात है अच्छी बात की बात नहीं हम कर रहे हैं, बुरी बातों की बात कर रहे हैं। ये सुनकर क्या होता है? दुख होता है, गुस्सा आता है या निराशा भी होती होगी, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर उन्हीं लोग के बारे में चर्चा क्यों की जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो किसी रूप से एक खास प्रभाव छोड़ गए हैं जिसकी वजह से दूसरे आपकी बातें करते हैं। यदि आपकी कोई पहचान है, कोई उपलब्धि है या आप लोगों के बीच में चर्चा का विषय है तो फिर बातें तो होंगी होंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ पर लोग बातें करते हैं क्योंकि वो आपसे कहीं ना कहीं जेलस हैं या आपको वो पसंद नहीं करते तो भाई किस तरीके से वो अपना इंतकाम ले सकते हैं तो आपके बारे में बातें करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं बहुत होती हैं। अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगला गाना मैं आपको सुनवाने वाला हूं जो कि हमारे दोस्त अजय ने सुनना चाहा है इंदौर से, और इन्होंने कहा है कि वो इस इन दिनों लाइफ इन मेट्रो का गाना सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको ये गाना सुनवाने वाला हूं। हालांकि ये बहुत ही खूबसूरत है और ये गाना जो है जो मैं आपको सुनवाने वाला हूं इसके तीन वर्जन हैं, एक श्रेया घोषाल की आवाज में है, एक पापोन की आवाज में है, एक अरिजीत सिंह की आवाज में है, और तीनों ही वर्जन जो है बहुत ही खूबसूरत है। कई बार क्या होता है कि कोई भी एक चीज होती है उसके अलग अलग जो रूप होते हैं, आकार होते हैं, वो अलग अलग तरीके से पसंद किए जाते हैं। तो चलिए देखिए कि आज मैंने आपके लिए कौन सा रूप, कौन सा आकार इस गाने का लिया है जो कि मैं आपको सुनवाने वाला हूं। बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, इसके बोल पे ध्यान दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो ये आप ही की कहानी हो।

बहुत ही खूबसूरत सा गाना था आपने सुना और उम्मीद करते हैं इस गाने को आपने पसंद किया होगा। जैसे मैंने कहा कि कई बार जो है कुछ गाने बहुत पसंद इसलिए आते हैं क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये मेरी कहानी है, मेरी परिस्थिति छिपी हुई है। काफ़ी सारे दोस्तों ने हमें याद किया था मानखुर्द से, प्रकाश शिंदे जी बहुत बहुत शुक्रिया याद करने के लिए, विजेंद्र जी ने हमें याद किया अकोला से जो कि इन गानों को पसंद कर रहे हैं, काफ़ी इनको गाने खूबसूरत लग रहे हैं, अच्छी बात है। अमरावती से जो है हमें याद किया हमारे दोस्त पंकज जी ने, जिन्होंने कहा कि साहब मैं आज कहीं नहीं जाने वाला हूँ, घर में रहूँगा, बाहर बहुत धूप और गर्मी है तो कोई मतलब नहीं है। दादर से हमें याद किया बाबा ने, उसके बाद फिर महेश बोहरा जी ने हमें याद किया था अजमेर राजस्थान से, और अकोला से ही जो है प्रमोद ने भी हमें याद किया जो कि इन गीतों को पसंद कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद फिर और भी आपको गाने सुनवाने वाले हैं। अगला गाना जो है ये सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत गाना है और इस गाने को एंजॉय कीजिए। ये गाना कौन सा है अब मैं ही बताऊंगा सारा, तो आप क्या सुनेंगे, फिर सुन लीजिए और जान लीजिए।

जी, एक साथ एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे कार्यक्रम हिट एंड हॉट, जहाँ पे आप हमें कुछ अपने गाने जो है जो कि आपको पसंद आते हैं वो हमें मेंशन करके लिख रहे हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि उन गानों को हम एयर कर सकें। लेकिन वही साहब कहते हैं ना कि सब मैं वादा नहीं कर सकता लेकिन कोशिश करता हूँ, और कहते हैं वादे अक्सर टूट जाते हैं लेकिन कोशिश जो है कामयाब हो जाती है। अब काफ़ी सारे दोस्त हुए हैं जिन्होंने हमें याद किया था, और पंजाब से इनफैक्ट जलंधर से जो है हमें संदीप मक्कर साहब ने पहले याद किया था। अब उनके साथ ज्योति भी हैं जो कि इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, इन गीतों को पसंद कर रही हैं। मिंटू, थॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा ने भी हमें पंजाब से याद किया, और वो भी कोई बहुत ही प्यार भरा गाना सुनना चाहते हैं। मैं कोशिश करते जा रहा हूँ जहाँ जहाँ आप लोग की फरमाइशें हैं उसको पूरी करने के लिए। हालांकि फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है आपके चेहरे अपने इस पसंदीदा गाने को सुनकर, तो भाई मैं क्यों नहीं करूँ। आरती, आपने भी अगला गाना सुनना चाहा है जो कि मैंने क्यों करके रखा है, उदित नारायण और साधना शर्कम की आवाज़ में। बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, मुझे याद है कि उस दौर में जो है मुझे लगता है कि इससे बड़ा प्यार का कोई गाना नहीं था। और आज भी अगर ना आप प्यार की बात करें, रिश्तों की बात करें, तो ये गाना अलग ही स्तर का है, अलग ही चेहरे पे मुस्कुराहट ला देता है। कई बार आप पुराने ख्यालात में पहुंच जाते हैं, कुछ पुरानी चीज़ें सोचने लगते हैं, कुछ पुराने खास लोग के बारे में सोचने लगते हैं जो कि शायद अब आपके साथ हैं नहीं हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये वो गाना है जिसमें पता नहीं एक अलग सा ही जादू है। चलिए इस जादू को महसूस करते हैं और इस गाने को सुनते हैं, और आपने समझ ही लिया होगा कि मैं कौन से गाने की बात कर रहा हूँ।

मुझे याद है कि उस समय की बात है जब कोई भी कीबोर्ड या पियानो बजाना सीखता था तो सबसे पहले जो है वो यही जो ट्यून थी जिस गाने की शुरुआत में थी, हर कोई उसको बजाने की कोशिश करता है। और आज भी जो है अगर ना आपको बताना हो कि आपको पियानो या कीबोर्ड बजाना आता है तो ये ट्यून ज़रूर आप बजा के दिखा देते हैं। पर बहुत ही खूबसूरत गाना है और उम्मीद करते हैं इस गाने को आपने पसंद किया होगा। और अगले गाने की तरफ बढ़ने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई लोग जब हमारे बारे में बात करते हैं तो क्या क्या होता है, ये याद रखिए कि जब भी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता, लेकिन आप अपने व्यवहार, अपने चरित्र, अपने पूरे काम से आप जो है लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और वही फोकस होना चाहिए। समय के साथ साथ लोगों की बातें नहीं बल्कि आपके जो कर्म है या आपका जो काम है, आपकी पर्सनालिटी है, आपकी शख्सियत है, वो आपकी पहचान बननी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। और यदि किसी ने आपको कुछ कहा है या आपके पीछे कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि आपको परेशान करती हैं तो बेस्ट चीज़ ये है कि सम्मानपूर्वक उस व्यक्ति के पास जाकर उससे बात करिए और इस तरीके की चीज़ों को दूर करने की कोशिश करिए। क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अनुमान लगाते रहें कि साहब ये ऐसा क्यों बोला गया, क्यों ऐसा मैंने क्या कर दिया, ये सब क्या सोचने की ज़रूरत है। या तो फिर ऐसी बात कर लीजिए, नहीं तो फिर इस चीज़ को कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए और अपने आगे बढ़ते जाइए। खुला संवाद अक्सर जो है कई बार गलतफहमियों को दूर कर देता है। अगला गाना जो है वो हम लगाने वाले हैं और ये सुनना चाहते हैं अंकित, जो कि इस फिल्म के इस गाने को बहुत पसंद करते हैं। तो अंकित, ये गाना आपके लिए है। और जिन लोग को ये जानना है कि साहब प्यार क्या होता है, मैं पूरा आपको लेक्चर तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन ये गाना सुनवा के जो है मैं आपको बता सकता हूं कि आखिर प्यार होता क्या है। आवाज़ है SP बालासुब्रमण्यम की और ये गाना कौन सा है, आप सुनते रहिए।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: जय, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, और हम इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, आपने हमें याद किया। उसके बाद फिर सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, काव्या मल्होत्रा, भाई सच्चा सिंह पाठक, उसके बाद प्रताप यादव, सुबलक्ष्मी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। से बहुत सारे दोस्त जो इस कार्यक्रम में शामिल करते रहते हैं और हमें ऊर्जा देते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि अब जो है आखिरी पड़ाव आ गया, तो मैं भी अपनी बात को खत्म करूंगा और अंत में यही कहूंगा कि भाई हमेशा याद रखिए कि यदि लोग आपके पीठ पीछे बातें करते हैं तो इसका एक ही यही अर्थ होता है कि आप उनसे आगे चल रहे हैं। और अपना ध्यान लोगों की बातों पर नहीं, अपने लक्ष्य और अपने विकास पर रखिए, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने वाले लोग आलोचनाओं से नहीं रुकते बल्कि अपने आप को और मजबूत करते हैं। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीना छोड़ दीजिए। लोग तब तक कहते रहेंगे जब तक आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे, और जब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे तो क्या फायदा है। इसलिए अपने जीवन की कहानी दूसरों की बातों से नहीं, अपने कर्मों से लिखिएगा। यही कहूंगा जाने से पहले, मेरी आपकी अगली मुलाकात कब होगी? जब भी होगी, बहुत सारे खूबसूरत गानों के साथ होगी। मेरा नाम है तन्मय और मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल की आवाज में ये आखिरी गाना मेरी तरफ से आप सभी के लिए। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा।

0: सम्राट चौधरी कल बिहार के गया जी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायोग संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंध

0: रिश्तों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
1: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। और कहते हैं कि जिस इंसान का स्वास्थ्य सही हो फिर उसकी जिंदगी की बल्ले बल्ले होती है। तो सभी श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि योग जो है ये हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा की अमूल्य देन है। नियमित योग से शरीर में ऊर्जा, मन में शांति और जीवन में सकारात्मकता आती है। तो लव यू जिंदगी कार्यक्रम है। अपनी जिंदगी से और अपनी हेल्थ से लव कीजिए, अपनी जिंदगी से प्यार कीजिए। और चलिए बढ़ते हैं गीतों की तरफ। और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक प्यारी सी कहानी।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 च्या कलम 12 नुसार पात्र नागरिक निशुल्क कायदेशीर मदत न्याय बंधू या मोबाईल ऍप वरून किंवा www.provono-eoj.in या वेबसाइट वरून मिळवू शकता.
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है. जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं. गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं. आप भी लगवा लीजिए. 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार. 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर.
2: हर घर

आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है और इस कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं आपकी दोस्त संतोष। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आपका और हमारा साथ होता है और जिंदगी की बहुत सारी बातें, रिश्तों की बातें, प्यार मोहब्बत की बातें और बहुत तरह तरह की बातें यहाँ पर आपके साथ होती हैं। आपके विचार भी साझा होते हैं और हमारे विचार तो आपके साथ साझा होते ही हैं और यही बातें हैं, यही जो है जज्बात हैं जो एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ कर रखते हैं और उसमें साथ देता है हमारा व्हाट्सएप, हमारा फ़ोन, तो इसके माध्यम से भी हम जुड़ते हैं। कहते हैं कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते रास्ते कहाँ, राहें कहाँ बदलती हैं, रास्ते कहाँ बदलते हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तो ये तो जिंदगी के फलसफे हैं और इन्हें जो है इंसान को अपनाना चाहिए और अपनाते हैं लोग, और कुछ लोग आसमान की ऊंचाइयों बुलंदियों तक छूते हैं और कुछ लोग कहीं बीच में भटकते भी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार मोहब्बत हो ना हो, लेकिन आपके जो अपने हैं, आपके अपने लोग आपके लिए इतने तड़पते हैं, तरसते हैं कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो जब तक आप घर नहीं पहुँचते हैं तो आँखें दरवाजे की तरफ लगी रहती हैं कि कब आप आएँ, और अगर कहीं आने वाला एक घंटा आधा घंटा लेट होने लगता है तो परिवार में जो लोग घर में होते हैं उनकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, और फोन पर फोन होने लगते हैं और जो है लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है कि कहीं बाहर कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। तो आपकी जिंदगी आपके अपनों की नजर में इतनी कीमती है तो आपको भी अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना है और जिंदगी की राहों में कहीं भी गलत तरीके से भटकना नहीं है। ऐसी ही एक कहानी आपको सुनाऊंगी बस थोड़ी देर बाद।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: आकाशवाणी FM रेनबो
0: म्यूजिकलिया। यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल

टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल लव यू जिंदगी कार्यक्रम में। अब जिसकी बात बड़ी देर से हो रही थी उस बात की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक कहानी की तरफ ले चलते हैं। राहुल नाम का एक लड़का है। राहुल एक संपन्न परिवार का इकलौता बेटा था और उसके इकलौता नहीं था, उसकी एक बहन भी थी। उसके पिता रमेश जी का अच्छा खासा व्यापार था। माँ सविता जी और छोटी बहन नेहा उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन राहुल को हमेशा लगता था कि उसके माता पिता उसे समझते नहीं हैं। जब भी पिता कहते कि बेटा समय की कीमत समझो, पढ़ाई पर ध्यान दो, जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है, तो राहुल नाराज हो जाता। और एक दिन गुस्से में उसने अपने पिता से कहा कि पापा, आप लोग मुझे सिर्फ रोकना जानते हैं, आपको मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं है। और बहुत गुस्सा हो गया। तो ये सब देखकर सुनकर उसकी माँ की आंखें भर आईं। पिता ने शांत स्वर में कहा कि बेटा, जिस दिन जीवन की धूप तेज होगी उस दिन हमारी ये बातें याद आएंगी तुम्हें। लेकिन राहुल ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और कुछ समय बाद राहुल की मुलाकात रिया नाम की एक अमीर लड़की से हो गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और जल्दी ही वो दोनों विवाह बंधन में बंध गए। रिया के परिवार के पास बहुत धन दौलत थी और रिया को राहुल के घर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो राहुल को लगा कि अब उसकी जिंदगी में क्या कमी है, वो अपने माता पिता का घर छोड़कर ससुराल में रहने लगा। लेकिन धीरे धीरे वहां पर उसे एहसास होने लगा कि वो दामाद नहीं है घर का, वो तो बोझ समझा जा रहा है। और रिया की जिद के आगे प्यार में पड़कर वो वहां रहने चला गया था। अपने घर से लड़ाई झगड़ा करके ये बोल के गया था कि हमेशा हमेशा के लिए अब मैं जा रहा हूं। लेकिन वहां क्या होता है कि एक दिन नाश्ते की मेज पर रिया के पिता ताना मारते हैं कि राहुल, आदमी की पहचान उसके काम से होती है, किसी और की कमाई पर जीने से नहीं होती है पहचान। और ऐसे ही धीरे धीरे जो है रिया के परिवार के लोग उसे कभी कभी कुछ कुछ बोलते रहते। रिया भी कभी कभी कह देती, मेरे पापा ना हो तो तुम क्या करोगी। ये बातें राहुल के दिल में तीर की तरह चुभने लगी और जिस सम्मान की तलाश में वो घर छोड़कर आया था वही सम्मान उससे दूर होता जा रहा था और धीरे धीरे कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। लेकिन जो है इन सब का कोई भी उपाय राहुल के पास नहीं था। और फिर वो एक ऐसा कदम उठाता है कि जो उसे मजबूरी में उठाना पड़ता है और अपना जो है आत्मसम्मान बचाने के लिए वो चुपचाप उस घर से निकल जाता है।

घर तो छोड़ दिया और माता पिता का घर तो उसने पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा होता है। अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया और ऐसा नहीं है कि घर छोड़कर वो बहुत सुख में रहा, क्योंकि उसके पास तो कुछ था ही नहीं, कुछ धन संपत्ति तो थी नहीं, और जो है खुद को अनुशासित अब उसे करना पड़ रहा था जो माता पिता के कहने से उसने नहीं किया था। आज उसे माता पिता की सारी बातें याद आ रही थी और वो सारी सुख सुविधाएं, प्यार दुलार सब याद आ रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में हमारे जो कदम उठते हैं और उसी का परिणाम हमें हर कदम पे भुगतना

0: विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 च्या कलम 12 नुसार पात्र नागरिक निशुल्क कायदेशीर मदत न्याय बंधू या मोबाईल ऍप वरून किंवा www.provono-doj.in या वेबसाइट वरून मिळवू शकता.
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी.
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा.
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी. बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर.
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in.
3: तो हम राहुल की बात कर रहे थे.

राहुल ने रिया का घर भी छोड़ दिया और दर दर की ठोकरें खाने लगा, यहां तक कि फुटपाथ पर रहने की नौबत आ गई। कहीं सर छुपाने की जगह नहीं, कहीं रात बिताने की जगह नहीं। और मन में ख्याल आता, काश मैंने पापा की बात मान ली होती, काश मैं घर छोड़कर ना गया होता, काश मैंने पढ़ाई की होती, काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। और इधर माता पिता बहुत बेचैन, माँ कहती कि मेरा बेटा बस एक बार लौट आए, फिर उसे कभी जाने नहीं देंगे। एक दिन रेलवे स्टेशन के बाहर पिता की नजर राहुल पर पड़ी, बिखरे हुए बाल, थका हुआ चेहरा और आंखों में निराशा। पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया और राहुल का चेहरा शर्म से झुक गया। पापा, मैं हार गया, पिता ने गले लगाते हुए कहा। बेटा बेटा, अपने बच्चे हारते नहीं, बस कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं, चलो घर चलते हैं। और जब माँ ने देखा तो दौड़कर सीने से लगा लिया। राहुल को पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया का सबसे निस्वार्थ प्रेम जो होता है वो माता पिता का होता है। कुछ दिन बाद जो है रिया ने उसे तलाक भी दे दिया, और लेकिन राहुल अब टूटने के बजाय संभल चुका था और पिता ने उसे व्यापार की बारीकियां सिखा दी थी। राहुल ने मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन के साथ काम करना शुरू किया और तलाक होने का भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ने लगी और कुछ ही वर्षों में उसने अपने पिता के व्यवसाय को एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया, ऊंचाइयों पर ले गया। लोग उसकी सफलता की मिसाल देने लगे और राहुल बहुत खुश रहने लगा। हाँ, छोटी बहन उसकी जो नेहा थी वो उसे कभी कभी छेड़ देती थी और बोलती थी कि ध्यान रखना, अब ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिससे कोई तकलीफ उठानी पड़े, और उसकी उसका नाक खींचती कभी तो कभी कान खींचती और उससे बार बार ये कहती।

0: श्रोतेहो, आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या अनुषंगाने भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयातर्फे 14 जून रोजी एक विशेष योग सत्र आयोजित करण्यात येत आहे. सकाळी 6:15 ते सकाळी 7:35 या वेळात आपण या सत्रात सहभागी होऊन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सच्या नामांकन प्रक्रियेचा भाग होऊ शकता. यासाठी आपल्याला करायचंय ते इतकंच, 1-800-315-7008 या टोल फ्री क्रमांकावर मिस्ड कॉल दिल्यानंतर आपली नोंदणी होऊन आपल्याला व्हॉट्सॲपवर एक संदेश मिळेल ज्यामध्ये योग सत्राची लिंक दिलेली असेल. 14 जून रोजी सकाळी 6:15 आपण या लिंकद्वारे लॉग इन करून या सत्रामध्ये सहभागी व्हायचं आहे. क्रमांक पुन्हा एकदा ऐका, 1-800-315-7008.
1: जब योग की बात होती है, एक्सरसाइज की बात होती है, तो लोग बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सही जानकारी नहीं होती, कुछ लोग सही से कर नहीं पाते हैं, और कुछ लोग करना ही नहीं चाहते हैं. ज़्यादातर लोग करना ही नहीं चाहते हैं, मतलब चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं. लेकिन कहा गया है ना कि स्वस्थ तन तो प्रसन्न मन, और ये योग से ही होगा. तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगा इन्फ्लुएंसर दीप्ति जैन के साथ आरजे ममता सहगल की खास बातचीत सुनिएगा, कब? सोमवार 15 जून 2026 के सुबह 10 बजे से. कहां पर? यहीं पर जी, एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर. तो ये कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा, और बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी. और जो है, हम सब के अंदर रहता है कि हम योग करेंगे, और कल से करेंगे, परसों से करेंगे, और थोड़ा कुछ लोग डरते भी हैं कि कैसे करें. तो बहुत सारी इस जो है बातचीत से आपको बहुत सारी गाइडेंस भी मिलेगी, और आपको शायद थोड़ा उत्साह भी मिले कि हाँ, बस अब हमें शुरुआत कर देनी है. तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए. तो चलिए हम कहानी का समापन भी कर देते हैं. और राहुल जो है अब बहुत अच्छे मकाम पे था, बहुत प्रसिद्धि पा ली थी, और बहुत खुशहाल था. वो कभी कभी सोचता कि मकान बड़े थे, दौलत भी बहुत थी दुनिया में, मगर सुकून माँ की गोद और पिता की छाँव में ही मिला. बहुत खोजा मैंने खुशियों का पता गैरों के शहर में, आखिर अपना घर ही मेरी मंजिल का पता निकला. तो ऐसे सब ख्यालात उसके जो है मन में आते रहते, और अपने जो है कंपनी को बहुत आगे उसने बढ़ाया. और ऐसे में माता का दिल तो तड़प रहा था, तो वो जो है अपने किसी पहचान की एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी कन्या को जो है राहुल की ज़िंदगी में प्रवेश कराने की कोशिश करती हैं, और दोनों में मोहब्बत हो भी जाती है, और दोनों का फिर से जो है राहुल की माँ ने इन दोनों का विवाह कराया, और ज़िंदगी इतनी खुशहाल हो गई. तो जो है राहुल, फिर भी राहुल हमेशा सोचता रहता कि माता पिता की डांट में छिपा प्यार और उनकी सीख में छुपा अनुभव ही जीवन की संपत्ति बनी, और हमें कोई हक नहीं है कि हम अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दें. हमें अपनी जिंदगी से प्यार करना बहुत जरूरी है, और क्योंकि हमारे अपने जो हैं वो हमारी जिंदगी से बहुत प्यार करते हैं. और प्यार मोहब्बत की बात निकली

है तो जब जो है राहुल अब नई जिंदगी में प्रवेश कर चुका था तो उसके मन में कुछ अलग अलग ख्याल आते थे और अब उसका मन बहुत खुश रहता था। और कहानी यही समाप्त होती है। सुनते रहिए FM Rainbow।

कहानी आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अभी 6:05 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार मराठी भाषा में। और आपको याद दिला दें कि आज शाम 6:30 से ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे FM रेनबो 107.1 MHz पर और न्यूज ऑन एयर पर। इस ऐप पर हमारा रेडियो का गीत संगीत का कार्यक्रम जारी रहेगा और महफिल जारी रहेगी। सुनते रहिए FM रेनबो, अंदाजे बया कार्यक्रम ठीक 6:15 से आप सुनेंगे।

अंदाजे बयां कार्यक्रम की इस महफिल में आप सभी का बहुत बहुत बहुत स्वागत है। और कहते हैं कि नजाकत नफासत अदाओं का था वो जमाना, मुजरे की महफिल में बसता था फन का खजाना। तो आज हम आपके लिए इस अंदाजे बयां कार्यक्रम में लेकर आए हैं कुछ हिट सुपर हिट हिंदी सिनेमा के जो है समृद्ध करने वाले संगीत का खजाना, जिसे कहते हैं मुजरा। बहुत सारे तरह के गाने रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत में, कव्वालियाँ रही हैं और गज़ल रही हैं और मुजरा रहा है। तो आज मुजरा लेकर आए हैं और मुजरा की ये महफिल आप लोगों को बहुत जो है पसंद आएगी। मुजरा केवल एक नृत्य नहीं है बल्कि हिंदुस्तानी तहजीब, शायरी, अदब और संगीत का वो आईना है जिसमें बीते दौर की महफिलें आज भी झिलमिलाती नज़र आती हैं। तो जब भी कभी मुजरा की महफिल सजती है तो सबको बहुत बहुत आनंद आता है और आज भी आप लोगों को बहुत आनंद आने वाला है। तो चलिए सुनते हैं अगला जो है, देखिए क्या आ रहा है।

केवल एक नृत्य शैली नहीं है और ये नवाबी संस्कृति से जुड़ी एक कलात्मक परंपरा है। इसमें गायन, नृत्य, अदब, नज़ाकत और उर्दू शायरी का सुंदर सुंदर बेहद सुंदर संगम देखने को मिलता है। और आज के इस कार्यक्रम में हम मुजरा सुनेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक सूचना दे दें कि शाम 6:30 बजे से ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एयर पर। रेडियो के गीत संगीत की महफिल जारी रहेगी, सुनते रहिए FM रेनबो, आकाशवाणी मुंबई का ये चैनल।

मुजरा की बात आती है तो मुजरा हिंदी सिनेमा का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और सिनेमाई पक्ष रहा है। रेडियो कार्यक्रम के लिए इसे हमेशा कला, संगीत, नृत्य, शायरी और फिल्म इतिहास के संदर्भ में हमेशा प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रस्तुत किया जाता रहा है। समय समय पर हम आपको मुजरा सुनवाते रहते हैं। जब तहजीब, अदाकारी और संगीत का अनोखा रंग मिलता है तो उसे मुजरा कहते हैं। तो आज इसी के रंग की बात करेंगे। मुजरा के

आप सुन रहे हैं और आज हम आपको सुनवा रहे हैं मुजरा। हिंदी सिनेमा जगत में मुजरा का बहुत बड़ा स्थान रहा है, महत्व रहा है। 1940 और 1950 के दशक से ही तवायफ और दरबारी संस्कृति पर आधारित कहानियां फिल्मों में दिखाई देने लगी। इन फिल्मों में मुजरा केवल मनोरंजन नहीं था बल्कि पात्रों की भावनाओं और सामाजिक स्थिति को व्यक्त करने का माध्यम भी था। धीरे धीरे मुजरा हिंदी फिल्मों की एक विशिष्ट पहचान बनता चला गया। भव्य सेट और भारतीय जो है शास्त्रीय संगीत और उत्कृष्ट नृत्य, इन सब ने इसे दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया। मुजरा गीतों की सबसे बड़ी विशेषता रही उनकी शायरी और संगीत। ठुमरी, दादरा, गजल और शास्त्रीय रागों का प्रभाव इन गीतों में स्पष्ट दिखाई देता है। नौशाद, मदन मोहन, खयाम, रोशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकारों ने इस परंपरा को बेहद समृद्ध किया। लता मंगेशकर, आशा भोसले और बेगम अख्तर जैसी आवाजों ने इन्हें अमर बना दिया। चलिए अब जो है अगली आवाज आशा जी की।

अंदाजे बयां कार्यक्रम में आज आप हैं संतोष के साथ और न्यूज ऑन एयर ऐप पर ये अंदाजे बयां कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज हम आपको सुनवा रहे हैं जो संगीत का कहते हैं कि बेहद लुभावना एक प्रकार है मुजरा, तो उस लुभावने प्रकार का आनंद आप लोग ले रहे हैं। और जब मुजरे की बात होती है तो मीना कुमारी, मधुबाला, वहीदा रहमान, रेखा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसी अभिनेत्रियों का नाम भी लिया जाता है। इन कलाकारों ने अपने अभिनय और नृत्य से मुजरे को नई ऊंचाइयां दी और इनकी अदाएं, भाव भंगिमाएं और प्रस्तुति हमेशा लोग याद करते रहेंगे। हिंदी सिनेमा में मुजरा अक्सर प्रेम, बिरह, इंतजार या सामाजिक संघर्ष को दर्शाने का माध्यम रहा है। कई बार एक मुजरा गीत पूरी कहानी का भाव भी व्यक्त कर देता है और यही कारण है कि दर्शक केवल गीत ही नहीं उसके पीछे की भावना से भी जुड़ जाते हैं और उसी में जो है उसके शब्दों में और उसके संगीत में लोग खो जाते हैं और मुजरा का आनंद हर किसी को आता है। आप सबको मुजरा कैसा लग रहा है आप जरूर लिखकर भेजिए और हिट एंड हॉट कार्यक्रम हम तुम कार्यक्रम जो आप 7:10 से सुनेंगे उसके लिए आप अपनी फरमाइश लिखकर हमें भेज सकते हैं। बस ये है कि हम हमेशा आपसे कहते हैं कि कुछ ऑप्शन भी दीजिए ताकि अगर आप हमें 4 गाने लिखकर भेजते हैं तो कोई ना कोई गाना जरूर आपको सुनवाया जा सकता है। तो इसलिए आप अपनी लिस्ट अभी से बनाना शुरू कर दीजिए और 7:10 पर हम तुम में आपकी फरमाइश, आपकी पसंद के गाने शामिल किए जाएंगे।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।

0: के अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
4: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
1: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
5: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।
6: दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के।
7: अपने

0: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल अंदाज़े मेरा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और जहां शब्दों की नज़ाकत नफासत की बात हो तो ऐसे में शायरी और बेहद उम्दा शायरी का जो दौर होता है वो भी मुजरा में इस्तेमाल होता है, और बहुत ही जो है भावनात्मक शब्दावली और बहुत ही उम्दा संगीत का साथ होता है। तो इसी जो है कड़ी में चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं कि हम आपको क्या सुनवाएं। चलिए हम आपको वो सुनवाते हैं जो बहुत दिनों से आप लोगों ने शायद सुना नहीं है।

कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर हम तुम कार्यक्रम लेकर हाजिर हो जाएंगे। और आप लोगों ने अपनी लिस्ट भेजना शुरू कर दिया है, बस फटाफट हम आप लोगों की लिस्ट चेक करते हैं और उसमें से गाने सेलेक्ट करते हैं और आपकी फरमाइश पूरी करने का पूरा प्रयास करेंगे। सुनते रहिए FM रेनबो चैनल, अंदाज़े बयां से नमस्कार।

आकाशवाणी एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर और हम तुम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज आपके साथ मैं आपकी दोस्त संतोष। तो कार्यक्रम का पहला गाना आ रहा है प्रणव शिंदे की पसंद पर और ये गाना आपको बता दूं कि जुबीन नौटियाल और आकांक्षा शर्मा की आवाजों में है और इस ये रुस्तम फिल्म का गाना है। मनोज मुंतशिर के बोल हैं, जीत गांगुली और आकांक्षा शर्मा के बोल हैं और इस गाने की फरमाइश प्रणव शिंदे ने इसलिए की है क्योंकि आज जुबिन नौटियाल का जन्मदिन है। तो उन्हें हमारी तरफ से भी और आप सबकी तरफ से भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आइए सुनते हैं उनका गाया हुआ गाना। और हमारे पास पर्याप्त लिस्ट आ चुकी है और बहुत प्यारे प्यारे गाने आज आप लोगों ने फरमाइश किए हैं। तो अब जो श्रोता अभी तक नहीं भेज पाए हैं वो अगर भेजते हैं अपने गाने और उनके गाने शामिल नहीं हो पाते हैं तो कृपया मायूस नहीं होना और मैं पूरी कोशिश करूंगी, जितना हो सकेगा उतना मैं जरूर शामिल करूंगी।

आपकी कसम फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ ये गाना था। और इस गाने के बाद अगला नंबर है आशा भोसले की आवाज में जो गाना आ रहा है ये है काला पानी फिल्म से। मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने लिखा, सचिन देव बर्मन साहब ने इसका संगीत बनाया, इस गाने को पसंद किया है राजेंद्र परमार जी ने। और एक बात आपको बताना रह गया कि हमने जो आपकी कसम फिल्म का गाना सुना था करवटें बदलते रहे सारी रात हम, और इस गाने को पसंद किया था प्रदीप अनंत कृष्णन ने, और अब राजेंद्र परमार जी की पसंद का गाना।

परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। बहुत ही प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म अर्पण का ये गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन था और इस गाने की फरमाइश की थी पंकज मोहोड़ ने अमरावती से। और कार्यक्रम का अगला गाना जो है ये आ रहा है सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे की आवाजों में। चांदनी फिल्म का ये गाना है, आनंद बख्शी के बोल हैं और ये गाना पसंद किया है अरविंद कुलकर्णी इचक करंजी ने। तो चलिए आपकी फरमाइश पर आपका चांदनी फिल्म का गाना।

हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता की पसंद पर कुर्बानी फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना। और कार्यक्रम का अगला गाना आ रहा है चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा। इस गाने को पसंद किया है आदर्श कनौजिया ने दादर मुंबई से।

मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है, इस गाने को पसंद किया इंदौर से अजय साखरे ने। और कार्यक्रम का अगला गाना जो है वो आ रहा है हम दोनों दो प्रेमी, विजेंद्र घाटोल की पसंद पर अकोला से आई है और ये वाला गाना सुनवाएंगे। और उसके पहले लेकिन जो है समय जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे मेरी भी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं कि हम किन का गाना सुनवा पाएंगे किन का नहीं। तो जो है हमारे श्रोता जब लिखकर भेजते हैं कोई फरमाइश कि मुझे ये गाना सुनना है तो उस वक्त उनको वो गाना सुनने का उनका बहुत दिल होता है, लेकिन जब नहीं सुन पाते हैं तो मायूस हो जाते हैं। लेकिन हमारी भी जो है सीमाएं हैं तो उसे आप लोग समझते हैं, लेकिन हम इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अपने श्रोताओं का नाम कार्यक्रम में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों का नाम शामिल कर लेते हैं जिनके गाने हम सुनवा पाए हैं या नहीं सुनवा पाए हैं, हम सबके नाम शामिल कर लेते हैं। आदर्श कनौजिया मुंबई से, मुंबई के दादर से हैं। सुरेश काशीनाथ पाटिल और अविनाश दामोदर कड़ू, आपने टिघरे पाड़ा वाढ़वन से हमें मैसेज भेजा है। रजनीकांत पाटिल वाढ़वन से हैं हमारे साथ। राजेंद्र परमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रकाश शिंदे जी की पसंद का भी गाना आज नहीं आ पाएगा। विजेंद्र घाटोल हमारे साथ अकोला से हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। मेहर अरोरा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, आपका गाना भी बहुत मुश्किल है। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से आपने हमें मैसेज किया है। किशोर नाइक है हमारे साथ और किशोर नाइक जी का गाना हमने क्यों करके रखा है देखते हैं हमारे पास कितना समय बचता है। पंकज मोहोड जी हमारे साथ हैं, पंकज मोहोड जी। और इसके आगे मुकेश कश्यप जी हमारे साथ हैं। मुकेश कश्यप जी ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं। इनके साथ हैं शीतल कश्यप, सुरेश, सोनू, राजपाल पंकज और सीमा, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह के साथ आपका मैसेज आया है। और मुकेश जी के साथ अगला नाम जुड़ रहा है प्रदीप अनंत कृष्णन जी का। और रघुनाथ खन्नूकर कोल्हापुर से इन्होंने हमें मैसेज किया है, रघुनाथ खन्नूकर ने। और महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, कीर्तनपुरी गोस्वामी जी ने हमें मैसेज किया है। लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी के साथ आपने नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज किया है। आप सब सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद भरत वर्मा, आप सब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हीरा मणि वर्मा के साथ पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेला

ल वर्मा हैं, जसविंदर हरजिंदर छिंदा जसवीर जी के साथ, जसवीर जस्सी गीता सीता हैं, प्रणव शिंदे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिग्दर्शन और कविता का गाना आज भी जो है हम पूरा प्रयास करेंगे कि सुनाएं, लेकिन शायद बहुत बाद में आपका मैसेज मिला है। सुशील यादव, रेणु यादव हैं उदयपुर राजस्थान से, और अजय साखरे इंदौर से, अरविंद कुलकर्णी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र जुथानी हैं, आप सभी, महेश बोहरा हमारे साथ हैं, और एक नाम है रविंद्र शेलार का बाघोली से, और श्रीधरन बालचंद्रन जी भी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ और भी कई सारे श्रोता हैं। कुछ लोगों के फोन कॉल आ रहे हैं जो कि रिसीव नहीं हो पा रहे हैं। बाबा हैं हमारे साथ दादर से, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला गाना हम जो सुनवा रहे हैं, हम दोनों दो प्रेमी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गाना आएगा, और उसके बाद जो है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाना आएगा ढल गया दिन हो गई शाम। ये गाना हमजोली फिल्म का है, और ये गाना जो है ढल गया दिन हो गई शाम किशोर नाइक की पसंद पर है, और हम दोनों दो प्रेमी विजेंद्र घाटोल की पसंद पर है आकोला से। तो चलिए ये दो गाने आप लोगों के लिए पेश करते हैं, और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बस सुनते रहिए FM रेनबो, और संतोष को विदा दीजिए, अनुमति दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और नाराज़ मत होना, गुस्सा मत होना, क्योंकि गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है। और अगली बार कोशिश ये रहेगी कि आप जल्दी भेजें गाने, ताकि आपके गाने शामिल हो सकें। नमस्कार।

0: रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन

0: के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
1: The world seeks trusted and reliable partners.
2: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
1: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
3: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का

0: जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
5: गुड इवनिंग। This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation level talks at historic Villa Carolos at Nice focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolus at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defence, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolus. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
6: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स.
5: Highlighting the strength of India-France ties, Mr. Modi said, while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
6: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है.
5: Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating, but who will innovate with India.
7: A country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation.
5: The French president also lauded India's achievements, including Chandrayaan mission, as examples of India's technological excellence.
7: With the Chandrayaan 3 mission in July 2023 that allowed the very first moon landing on the south pole of the moon that was led in a record time by ISRO with record cost, is a demonstration in terms of strengths, innovation, but also in terms of implementations at the industrial level and something that is very concrete. And this has to lead many countries of the world to see India how it's like today. Not only a country full of contractors, no, it's a country of innovation.
5: Speaking at the event, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said India is emerging as a trusted and reliable partner at a time of global geopolitical and technological transformation.
8: The world seeks trusted and reliable partners, and that is what India brings to the table. We bring the energy of the world's youngest large nation, the finest talent pool available, and a scale that few can match.
5: Following the inauguration, Prime Minister Modi and President Macron visited the exhibition and interacted with startup founders, researchers and investors participating in the event.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष

0: शीर्ष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी एफएम पर वक्त हुआ है 11:05, यानी वक्त हुआ है प्रोग्राम रंगे महफिल का। मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा तिवारी और हम और आप मिलकर चलेंगे खूबसूरत गजलों की गलियों में। 1, 2, 3.

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगी महफिल, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। दिलकश गजरों गजरों का दौर जारी है।

आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं दिलकश भावों और खूबसूरत लफ्जों का प्रोग्राम रंगे महफिल। मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा तिवारी और आप जो सुन रहे हैं हमें अपने तकिए पर से रखे वो है हमारे इस प्रोग्राम की रौनक। जगीर साहब और गालिब का कॉम्बिनेशन।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एचआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एचआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं गजलों का प्रोग्राम रंगी महफिल में आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। और ये गजल उन सब के लिए जो आज भी अपने बचपन की रौनक अपने दिल में संजोए हुए हैं, बस उसे झांकना उसे थपथपाना भूल गए। आइए उस बचपन उस रौनक को याद कर लेते हैं।

बारह यानी वो समय जब मैं आपसे लूंगी इजाजत, पर गानों का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे फिर होगी मुलाकात, फिर होगी कभी बात। तब तक के लिए आप गुनगुनाते रहिए जिंदगी की गालिबाना धुनों पर। प्रगति वाड़े की तरफ से बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रेनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट पिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर

0: पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालशिरस तालुका में महासवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। 12:11 मिडनाइट तो नहीं लेकिन मिडनाइट की शुरुआत हो चुकी है। अगला दिन अध्याय बदलते ही कैलेंडर का आ चुका है, दस्तक दे चुका है और इसका जरिया हम ही बन रहे हैं। हर बार की तरह ये सौभाग्य है हमारा कि दिन की पहली मुलाकात आपके साथ होती है जीरो और शो में, जैसे ही पन्ना पलटता है ठीक 12:00। 12:05 बुलेटिन देश दुनिया का हालचाल लेने के बाद हम आपसे मुखातिब हो जाते हैं और बस अब लगता है कि आपके जो मैसेजेस हैं, आपसे जो बात करने का जो कायदा है, जो रास्ता है, कहना चाहिए जरिया है, वो और बढ़ता जाए, वाइड होता जाए। और इसकी शुरुआत कर चुके हैं अफशा खानम जी। अफशा जी हमें लिखते हैं ज़िला बिजनौर से और इन्होंने बस फटाफट बताया कि रजत जी नमस्कार, स्वागत किया। स्वागत तो आप सभी का है और आपका भी अफशा जी। प्रोग्राम है जीरो और शो आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर तो आप जुड़े हैं ही, जहां 102.6 वाली रेंज खत्म हो जाती है वहां से हमारी ऐप की रेंज शुरू हो जाती है और ऐप की रेंज अभी जा पहुंची है इसराइल धर्मेंद्र जी के पास, जिन्होंने सीधे सर जी नमस्कार कहा। आपके हालचाल बहुत ठीक हों हम ये उम्मीद करते हैं धर्मेंद्र भाई। आपको भी नमस्कार, बहुत सारे

0: शुभकामनाएं आने वाले दिन की आप दोनों को ही और हमारे सभी श्रोता मित्रों की जो अभी बस जुड़ने वाले हैं, जुड़ने जा रहे हैं। जीरा और शो है प्रोग्राम का नाम, इसमें सतरंगी कार्यक्रम है, समझे इसे। खूबसूरत से खूबसूरत गाना, एक अपने दौर का मशहूर गाना लाने की कोशिश करता हूँ आप तक के लिए। तो आप जुड़े रहें और जुड़े ही रहें क्योंकि मैं आपके साथ ही रहने वाला हूं और करेंगे बातें पर्दे के पीछे, और पर्दे के सामने होंगे खूबसूरत गाने जो इस शो के लिए खास तौर से चुनकर लाता हूं मैं आपके लिए। रजत, स्वीकार कीजिए मेरा नमन, मेरा नमस्कार, प्रणाम, सभी को आभार और शुभकामनाएं आने वाले दिन की। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
6: ठीक है।
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर

0: या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 वर्षों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाती है। अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा

मलचिरस तालुका में महसवाड पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में कल बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात के अंधेरे हैं, कहते हैं कि हमें मंजिल नजर आती नहीं। रात के अंधेरों में हम भी ये कहते हैं कि क्या मंजिल नजर आती है। दोनों ही बातें अलग अलग फलसफे लिए हैं, अलग अलग मायने लिए हैं, और अगर खींचतान ना करें तो कुछ भी इधर का उधर मतलब निकाल लेते हैं लोग। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हमेशा एक पॉजिटिव नोट के साथ चलना ही चाहिए, क्योंकि अंधेरे भी हैं कुदरत की तरफ से और उजाले भी हैं। कुछ लोग अंधेरे में ही मंजिल ढूंढ लेते हैं, कुछ उजालों का इंतज़ार करते रह जाते हैं। तो रोशनी का इंतज़ार कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप इंतज़ार ही ना करते रहें, इसलिए अंधेरे भी कई बार मुफीद मंजिल दे जाते हैं। ज़रूरत है सिर्फ खंगालने की, एक इच्छा शक्ति की, एक ख़ास किस्म की विल पावर की, जो सब में होनी चाहिए दोस्तों, और बहुत लोगों में होती भी है। और कई बार हम किसी न किसी गफलत का शिकार हो जाते हैं, और वक्त है कि बंद मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जाता है। जब मुट्ठी खाली रह जाती है, तब हमें लगता है कि उस अंधेरे में भी कोई उम्मीद की किरण थी जो हमसे कहीं भटक गई, या हम उससे भटक गए, हमने वक्त रहते उस पर ध्यान नहीं दिया। तो रात के अंधेरे बहुत गुनगुनाती सी बात करते हैं, खूबसूरत बात करते हैं, और कई उलझनों का सुलझान भी उनके हाथ में होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर रात के अंधेरे में भी, इस अंधेरी रात में भी कुछ अच्छे गाने अच्छी जगह से, एक मंजिल से आप तक पहुंच रहे हैं, तो क्या बुरा है, उन्हें खींच लीजिए, झपट लीजिए और खो जाइए उन खूबसूरत यादों की तरफ, जो शायद दिन में आपको मौका नहीं देती होंगी अपनी तरफ आने का। थकान भर में कई बार तो संडे या किसी पब्लिक हॉलिडे की छुट्टी भी पता नहीं चलती किस

0: खास ज़रूरी काम में निकल गई। तो अगर रात का अंधेरा आपके इर्द गिर्द है और आप जागे हुए हैं, नींद ने अभी आपको अपने खूबसूरत आगोश में नहीं लिया है, तो आप जुड़िए ना हमसे हमारे इस प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम का नाम है सुहानी रात, 90 और आसपास के गानों से सजा एक गुलदस्ता लेकर आते हैं हम हर रात इन्हीं चैनल मीटर्स पर। मीटर हैं 102.6, 102.6 आकाशवाणी रेनबो। और इसके अलावा अगर आप कहीं भी दूर हैं, यहाँ तक फ्रीक्वेंसी किसी भी वजह से नहीं पहुँच पा रही है, तो न्यूज़ ऑन एयर ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और इसमें आकाशवाणी रेनबो दिल्ली ढूंढिए और पकड़ लीजिए हमें और खो जाइए उन यादों में जिन्हें याद करने का ज़रिया हमारे ये खूबसूरत गाने बन रहे हैं जो ख़ास तौर से हम लेकर आते हैं आप ही के लिए। आप जुड़े मेरे साथ, प्रोग्राम है सुहानी रात मेरे यानि रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, 102.6 पर आप जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, और नए और आने वाले हर सेकेंड के लिए आपको हमारी तरफ से मिलते रहें ढेर सारी शुभकामनाएँ। शुभकामनाएं ले लीजिए लेकिन हमारे साथ जुड़े रहिए। कुछ कहना चाहते हैं तो 9868107070 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसके जरिए कर सकते हैं आप हमसे बात। तो शुरू हो चुका है प्रोग्राम सुहानी रात।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: 1 जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रेनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रास्तिलावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालशिरस तालुका में मासवाड पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाली के पास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में कल बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 आपने ट्यून इन किया है और घड़ी के 2:11 बजाने के संकेत हमें साफ साफ दिख रहे हैं हमारे डिस्प्ले पर कंप्यूटर के, और ये भी पता चल रहा है कि हमारे बहुत सारे श्रोता अभी जगे हैं और हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। और अब चूंकि घंटा बदल चुका है, घड़ी की सुइयां इधर उधर हो गई हैं और नया शो शुरू हो चुका है। नए शो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मैं रजत, आकाशवाणी रेनबो पर, और आप हैं मेरे साथ और प्रोग्राम का नाम है, शो का नाम है बुलाना बने। बुलाना बने में आप जुड़ चुके हैं आज के संस्करण में। आप सभी का कर रहा हूं मैं तहे दिल स्वागत अभिनंदन, सिर्फ इस बात के साथ कि कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि आपके दिल में ऐसी कौन सी बात है जिसे आप भूल नहीं पाए। देखिए गाने तो मैं ऐसे ही चलाऊंगा जो भुलाए ना बने, लेकिन कुछ बात अगर आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और मतलब बता सकते हैं तो ज़रूर बताइए 9868107070 पर, 9868107070 पर, क्योंकि प्रोग्राम में गाने तो मैं बढ़िया सुनवाऊंगा ये वादा तो ज़रूर करता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा आपके मैसेजेस को रिप्लाई करने की, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज भी हम यादों के उस झरोखे में जाने का मादा उठा पाते हैं, कोशिश कर पाते हैं जिन्हें हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं, क्योंकि फिर वो याद करने का, उनमें जाने का तरीका कैसा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जाने अनजाने डिप्रेशन की तरफ मुड़ जाएं, ऐसा तो होना ही नहीं है। सिर्फ कोशिश ये कीजिए कि कोई बात अगर बोझ बनी बैठी है तो उसे दिल से निकाल दीजिए या किसी विश्वास पात्र के साथ साझा कर लीजिए, और अगर भूल सकते हैं तो भूलने की कोशिश कीजिए, लेकिन कोई याद आपके याद आने पर, आपके दिल और दिमाग के झरोखे खटखटाने के बाद कुछ ऐसा महसूस कराती है कि हाँ आप दिल खुश महसूस करें, थोड़ा सा हल्का महसूस करें, तो ऐसी ही बातों को हम पता है क्या कहते हैं, भुलाए ना बने। ऐसी बातों को याद कर लेने में कोई हर्ज नहीं, और मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी वक्त अगर आपको ऐसा मिलता है, वक्त का कोई कोना अगर आपको इजाज़त देता है कि वहाँ बैठकर उस तरह की यादों को आप अपने जीवन का हिस्सा बना सकें, थोड़ी देर के लिए ही सही उनके साथ जी सकें, उठ सकें, बैठ सकें, कुछ बाँट सकें खट्टी मीठी बातें, तो ऐसा ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से अगर आपके चेहरों पर स्माइल आती है, मुस्कान आती है, तो ये उसके बनिस्पत ही है कि आप दुखी हों, है ना। खामखा टेंशन में, डिप्रेशन में, वैसे ही बहुत समस्याएं हमारे इर्द गिर्द, हमारे अतराफ के, हम उनसे निकलना चाहें तो भी कई बार नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसी कोई कोशिश जो उनसे लड़ने की सूझबूझ देती हो हमें, उनसे लड़ने की ताकत देती हो हमें, कुछ देर के लिए मुस्कान हमारे चेहरे पर लाती हो, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ा देती हो, तो उसे जगह दें, उसका स्वागत करें अपनी ज़िंदगी में, अपनी यादों में। मैं यही कहूँगा कार्यक्रम के शुरू में, और कार्यक्रम का आगाज़ चूंकि हम एक खूबसूरत गाने से कर ही चुके हैं, आगे भी बढ़िया गाने आएंगे, आपको यादों की तरफ खींच लेने वाले गाने आएंगे, इस वादे के साथ पढ़ाते हैं प्रोग्राम को, और आप जुड़े हैं कार्यक्रम

0: क्योंकि कहना चाहिए आप जुड़े हैं कार्यक्रम भुलायना बनने में मेरे यानी रजत के साथ। वक्त हो चला है 2:14 घड़ी के मुताबिक।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 से 9 तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती। सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा

0: सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया पहुंच गए हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रेनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट www.neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालशिरस तालुका में महसवाड पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में कल बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के चौथे दिन जर्मनी ने वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रही टीम कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चांद की आर्ट तो अभी है भी और नहीं भी है, क्योंकि कहीं कहीं बादलों ने आसमान को अभी भी थोड़ा सा ना अपने आगोश में लिया हुआ है। और दिल्ली एनसीआर इस वक्त कभी गर्म हवा तो कभी ठंडी हवा के झोंके जो है ना पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहा है। और मौसम की जो आँख मिचौली है ये अमूमन तो होती है, चलती है, लेकिन कई बार मौसम की जानकारी से बेमौसमी झरोके से झांकना भी कह देते हैं मौसम का, और वो कह देते हैं कि भाई बारिश अभी तो मुफीद नहीं, लेकिन जिस तरह से गर्मी पड़ी है पिछले कुछ दिनों से उसको देखते हुए लगता है कि कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा तो दखल होना भी चाहिए बादलों का और बारिश का, तभी ज़िंदगी जो है आसान होगी नीचे, क्योंकि मेहनत बहुत करनी है, देश को बढ़ाना है, अपने आप को बढ़ाना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है। तो ऐसी मशक्क़त जब हम करते हैं तो कहीं कहीं मौसम का जो संतुलन है वो हमें हमारा सहयोगी बनता देखना चाहिए। और अब क्योंकि ये तो अपने हाथ की बात है नहीं, लेकिन हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हर मौसम को जिए, उसका लुत्फ उठाएं और मौसम के हिसाब से एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। ज़्यादा गर्मी है बाहर तो कुछ इस तरह की एहतियात बरत के चलें, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, और बारिश है तो भी एहतियात बरत के चलें, लेकिन लुत्फ उठाएं, आनंद लें। और क्योंकि ये कुदरत का तोहफा है, चाहे बादल हो, लू हो, गर्मी हो, कहीं ना कहीं इसके अगर थोड़े थोड़े नुकसान हैं तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो उन फ़ायदों का पर अपना फोकस करें, अपना ध्यान दें, और उन फ़ायदों का फ़ायदा उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें, घर में हों, घर से बाहर हों, अपना ध्यान ज़रूर रखें, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा। और प्रोग्राम शुरू हो चुका है चूँकि मिडनाइट मेलोडीज़, और इस प्रोग्राम में अभी आपने साथिया फिल्म से साधना सरगम और साथियों को सुना, आगे भी हम इसी तरह की नए पुराने गानों को आप तक पहुंचाते रहेंगे इसी कार्यक्रम में। फिलहाल जिसका नाम है मिडनाइट मेलोडीज, मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप जुड़े हैं हमारे साथ। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी आप मुझे सुन सकते हैं, मेरे गानों को सुन सकते हैं, और इस चैनल पर आने वाले हर शो को सुन सकते हैं 24 घंटे। और कुछ कहना चाहें तो 9868107070 पर कह सकते हैं। लेकिन एक दरख्वास्त है आपसे कि थोड़ा सा गुजारिश है आपसे कि फरमाइशें इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लेखा जोखा तैयार होता है हमारे कार्यक्रमों का, तो रिक्वेस्ट अगर आप भेज रहे हैं तो उसी मोड की भेजें जिस मोड पर हम प्रोग्राम चला रहे हैं। थोड़ा पुराने गानों के बीच में नए गाने और नए में बहुत पुराने गाने, थोड़ा सा जो उसका समायोजन है मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। लेकिन अब चूंकि शो आपका है, हम आपके हैं, ये चैनल भी आप ही का है, इसलिए इख्तियार तो पूरा है आपका, लेकिन बस थोड़ी सी एक उलझन हो जाती है जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की, आपके सामने साझा की। और कोशिश करते हैं आपकी पसंद के गाने बिना आपके आपकी इच्छा मन में हुई और हम पहुँच गए वो गाना लेकर। अब ये पहला गाना आपने सुना तो समझ ही गए होंगे कि किस ढर्रे पर ये कार्यक्रम जाने वाला है।

0: बस गुजरने के लिए तैयार रखें अपने आप को आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर और इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। मैं हूं रजत, आपके साथ प्रोग्राम का नाम है मिडनाइट मेलोडीज।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: हिमालय की गोद से लेकर
8: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
7: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
8: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
7: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
8: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
7: तो सुनना ना भूलें
8: रेनबो डेस्टिनेशंस
7: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंच गए हैं। स्लोवाकिया के विदेश मंत्री जोराज ब्लानार ने उनका स्वागत किया। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने

0: नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट www.neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शुरू होनी है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालशिरस तालुका में महसवाड पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के चौथे दिन मैच में जर्मनी ने वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रही टीम कुराकाओ को 7-1 से हराया। ग्रुप एफ के एक अन्य मैच में नीदरलैंड और जापान के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 4:12 वक्त हो चला है कार्यक्रम सारे गामा का और इसकी शुरुआत हम कर चुके हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैं हूं रजत आपके साथ और प्रोग्राम में सबसे पहला गीत अभी आपने मोहम्मद अजीज और नितिन मुकेश के युगल स्वरों में सुना। फिल्म थी खुदगर्ज, लेट 80s की ये फिल्म थी और यहीं से थोड़ा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे और सारे गामा की मधुरम धुनों को और मधुरम बनाएंगे ताकि आने वाला दिन, क्योंकि सप्ताह का आरंभ है और हम चाहेंगे कि ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मिले। आप शिक्षा से जुड़े हैं, शिक्षण से जुड़े हैं या किसी भी कंपनी में, किसी संगठन में कार्यरत हैं, आपके लिए ये हफ्ता, आने वाला वीक जो कि आज से शुरू हो गया है, आपके लिए शुभ हो। और हमारे गीत आप कि कितनी मदद कर सकते हैं ये कोशिश हम ज़रूर करेंगे और आप भी कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा पॉजिटिव स्टार्ट करने की दिन को और मुस्कान के साथ जीने की। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। शुरू करते हैं कार्यक्रम को, क्या शुरू तो हो ही चुका है, आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को। आप जुड़े हैं सारेगामा प्रोग्राम में मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 से 9 तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।